ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि तदनुसार 8 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा

0: व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरित मानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 20। मुख्य गायक स्वर है रजनी जोगलेकर के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से रामकथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गामीचा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धार और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए

रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गामीचा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धार और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे की 6:15 हो रहे हैं। सुविचार। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर अनुभव के साथ हमें कुछ नया सिखाता है। इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे की 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म मासूम से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत की बोल गुलजार की और संगीत आर डी बर्मन का।

फिल्म संगीत का ये गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म सनम बेवफा से। आवाज़ है विपिन सचदेवा की, गीत के बोल सावन कुमार की और संगीत महेश किशोर का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए श्रोता, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से आवाज़ें हैं आशा भोसले और साथियों की, गीत की बोल इंदिवर की और संगीत बप्पी लहरी का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जहां बातें आपकी और हमारी और साथ खूबसूरत से नगमों का, तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस पहले गीत के साथ।

दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और बात हम आज के दिन की करें तो जी हाँ, आज का दिन जो है दोस्तों अपना विशेष महत्व रखता है तीन चीज़ों के लिए, और तीनों ही हमारे जीवन से बेहद जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज का दिन 8 जून जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जागरूकता और मित्रता के रूप में जो है अपना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि 8 जून को जो है दोस्तों विश्व भर में मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस के रूप में। जी हाँ, वर्ल्ड ओशियन डे। इसे मुख्य रूप से महासागरों के संरक्षण, समुद्री जीवन की रक्षा और जलीय संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है आज का दिन एक और वजह से भी महत्वपूर्ण है, जिसे मनाया जाता है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे के रूप में। और हेल्थ के रूप में भी आज का दिन जो है अपने आप में अलग विशेष महत्व रखता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के लेकर आज हम बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जागरूकता और मित्रता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये मिलकर न केवल एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं, बल्कि एक मजबूत और सकारात्मक समुदाय का आधार भी बनते हैं।

दोस्तों, हाल ही में हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया था और आज का दिन भी एक कदम पर्यावरण की ओर और बढ़ाने का है। जी हाँ, और साथ ही साथ आज का दिन जो है वो दोस्ती के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हो कि अगर पर्यावरण से दोस्ती की जाए। जी हाँ, दोस्ती यानी कि जिसे हम पसंद करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। और साथ में अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से ज़्यादा हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है। तो पर्यावरण से दोस्ती करने का मतलब है प्रकृति के साथ संतुलन बनाना और अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना। कई सारे बदलाव लाकर हम जो है एक प्रकृति की तरफ अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर पाते हैं। और उन्हीं में जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पेड़ पौधे लगाना, पानी और बिजली की बचत करना, पेड़ पौधों से प्यार करना, यानी कि कई तरह से जो है हम उन्हें अपने घरों में, हमारे घर घरों के आसपास उन्हें जगह दे सकते हैं। अपने घर में, बालकनी में, आसपास की खाली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की कटाई को रोकें और उनका संरक्षण भी करें।

दोस्तों, बात हमने मित्रता की है तो इसी की तरफ एक जो है हमारी दोस्ती हमारी हेल्थ से भी होनी चाहिए। यह सेहत से दोस्ती करने का मतलब है अपने शरीर और मन की ज़रूरतों को समझना और उनके अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालना। ये कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर एक अच्छा जीवन का सफ़र तय करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, सेहत से दोस्ती करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने साथ लेकर चलें तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे हमारे खान पान को अच्छा बनाएं और उसके साथ ही संतुलित आहार लेना, हाइड्रेट रहना, शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहना, यानी कि कुछ न कुछ छोटी बड़ी एक्टिविटी आप हर रोज़ करते रहें। साथ ही साथ जो है दोस्तों, आज के दौर में एक बड़ी समस्या नींद के रूप में भी रहती है। जी हाँ, इसके लिए 7-8 घंटों की नींद का होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ मानसिक शांति को भी प्राथमिकता देना ज़रूरी है। इसके लिए तनाव मुक्त रहना यानी मेडिटेट करना, साथ ही गहरी सांस लेने का अभ्यास भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है।

दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति खुशी के लिए प्रयासरत रहता है। जी हाँ, और सबके लिए खुशी के अपने अपने मायने हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है कि वे हर तरह से जो है खुश कैसे रह सकते हैं। और खुशी जो है किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, खुशी अपने मन का भाव है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए अपनी सोच और छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाना सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, नियमित व्यायाम करना, अपने लिए समय निकालना और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना आपको हर दिन मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रख सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम जो है हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान बना सकते हैं, यानी कि हम उनकी तरफ न देखें जो हमसे आगे हो, हम उनकी तरफ भी देख सकते हैं जो हमसे कई पीछे भी हो। तो ऐसे में हम जो है ऊपर ईश्वर का जो है शुक्रिया भी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कर सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले अपने बारे में सोचें, आपके साथ दिन में जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोच सकते हैं। ये एक सकारात्मकता बढ़ाने का तरीका है। जी हाँ, आज स्वस्थ होना और अपने आसपास चीज़ों का ठीक होना भी एक खुशी के रूप में उसे मनाया जा सकता है।

दोस्तों, बात हमने हेल्थ की है और हेल्थ को अक्सर लोग सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के रूप में देखते हैं। जी हाँ, तो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है और आज के दौर में तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस अपने हाईएस्ट पीक पर है तो हर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, वो है सोशल मीडिया और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना। थोड़ा सा आप जो कोशिश करें कि दिन का एक हिस्सा आप बिना फ़ोन के बिताएं, और साथ ही साथ एक्चुअल में एक दोस्त हमेशा अपने पास रखें जिसके साथ आप बात कर सकें। जी हाँ, और जहाँ पर आप बिना सोचे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए, और फिलहाल के लिए हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री

0: जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल

0: प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं जो पौधे

0: इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ

0: देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और इस वक्त आप अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार सुन रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारी बातें और प्यारे प्यारे गीत। लेकिन कहते हैं कि जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और सुबह का वो मौका होता है जब दिन की शुरुआत होती है। सुबह का मतलब केवल सूरज की किरणें नहीं होती, यह संसार की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है।
0: बिल्कुल, नई उम्मीद के साथ ही आज के दिन का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी प्रिय श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार में। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि आज के दिन से जुड़ी है। फिलहाल करवाते हैं आपको टीम परिचय। एचपीटी पर हैं श्रोताओं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख।
1: वहीं एफएम ट्रांसमीटर

0: से सहयोग मिल रहा है सीएल सोनी का।
1: कंट्रोल रूम से हैं प्रवीण कुमार।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है आकांक्षा वैष्णव।
1: एफएम चैनल से है नीतू।
0: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का।
1: और इन सभी के साथ मैं सोफिया खान
0: और मैं अर्चना चौहान। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नए नए गीतों के साथ। कार्यक्रम नए नवेले में पहला गीत खास आपके लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, शहर का मौसम हमेशा बदलता रहता है, बस हमें उसके साथ बदलना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है वो आता जाता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी तूफान होते हैं, और कभी गर्मी बरसती है। और जो अभी एकदम से हमारे शहर जोधपुर का जो टेम्परेचर बढ़ा है, उससे गर्मी तो हमें महसूस हो ही रही है, साथ ही साथ जो ये परिवर्तन है वो हमें बताता है कि ज़िंदगी में एक चीज़ है जो तय है, जो एकदम फिक्स है, और वो है परिवर्तन। और जहाँ तक की बात की जाए रेडियो की, तो रेडियो में भी बहुत सारे परिवर्तन हमेशा से होते आए हैं, और ये जो रेडियो का माध्यम है वो आपको, हमसे और हमें आपसे जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज है 8 जून का दिन, और आज का दिन रेडियो के लिए बहुत खास है। क्यों खास है? बिल्कुल, हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज का जो इतिहास है रेडियो से संबंधित वो क्या कहता है आपसे।
1: बिल्कुल, भारत में जो रेडियो प्रसारण और आकाशवाणी का सफ़र है श्रोताओं, वो देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बदलावों का एक बहुत ही जीवंत दस्तावेज़ है। और इस गौरवशाली और सुनहरे सफ़र के प्रमुख पड़ाव भी हैं। जैसे अगर बात करें 1920 के दशक की, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1924 के आसपास कुछ रेडियो क्लबों द्वारा हुई थी श्रोताओं। और नियमित सेवा की जो शुरुआत है वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत हुई, जिसके बाद कोलकाता में भी इसका प्रसारण शुरू हुआ।
0: और इस तरह देश में रेडियो की शुरुआत हुई।

0: हाँ दोस्तों, सब व्यक्ति अपने आप में यूनिक होते हैं क्योंकि ईश्वर ने इनको ऐसे ही बनाया है। और ये एक खासियत होती है कि आप अपने आप में अलग हैं। यही खासियत आपको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और यही खासियत है रेडियो की भी। रेडियो भी अपने आप में एक अलग ही जो माध्यम है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 23 जुलाई 1927 में हुई थी और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC के तहत हुई थी। और उस वक्त के जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने इसे भारतीयों के लिए एक वरदान बताया था। लेकिन किसी कारणवश 1930 में ये कंपनी बंद हो गई और इसके बाद सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया।
1: बिल्कुल। इसके बाद मैसूर रियासत में डॉक्टर M.V. गोपाल स्वामी ने एक छोटे ट्रांसमीटर से प्रसारण शुरू किया और इसे नाम दिया आकाशवाणी। और श्रोताओं, आज ही का दिन यानी 8 जून 1936 को भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो किया गया और बाद में ये पूरी तरह आकाशवाणी के नाम से लोकप्रिय हुआ।

0: और जैसा कि श्रोताओं आपको हमने बताया, 8 जून 1936 को जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर जो है आकाशवाणी किया गया। 90 साल हो गए श्रोताओं, एक जानकारी के स्रोत के रूप में रेडियो जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चाहे बात गानों की हो, क्रिकेट कमेंट्री की हो, या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ की हो, या जो अभी न्यूज़ चल रही है उसकी हो, रेडियो ने हमेशा से आज तक जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाया है।
1: जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का माध्यम बना है रेडियो। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और जब बात की जाए 1957 की, तो आकाशवाणी का एक और माध्यम बना, वो था मनोरंजन का माध्यम। और मनोरंजन का माध्यम बना विविध भारती। तो इस तरह से बहुत सारे आयामों को छूता आया है आकाशवाणी। और आज जब 90 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आप सभी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आकाशवाणी का ये जो लंबा सफ़र है वो और भी लंबा रहे, और इसी तरह से जो ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन है वो आप तक पहुंचता रहे।

0: बिल्कुल श्रोताओं, दुनिया और रेडियो की दुनिया भी जो है बहुत ही रोचक है। और बात करें तो आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी ने श्रोताओं शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, साहित्य को सहेजने का एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बात महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन जैसी महान साहित्यिक विभूतियों की रचनाएं और आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से बिल्कुल जन जन तक पहुंची है।
1: वही सोफिया, बदलते समय के साथ आकाशवाणी ने खुद को भी बदला है। जहाँ तक की बात की जाए, एफएम का एक ऐसा दौर आया था जब आकाशवाणी का जो ये चैनल था वो लोगों तक पहुँचा और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। आज की डेट में बात की जाए तो डिजिटल स्ट्रीमिंग के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो नई पीढ़ी है वो आकाशवाणी से जुड़ रही है। और इस तरह से जो ये सूचनाओं के दौर में आकाशवाणी ने खुद को बदला और साथ ही साथ जो ये इसकी विश्वसनीयता है और प्रमाणिकता है वो हमेशा की तरह कायम है। तो आज जब 90 वर्ष पूरे हो गए हैं तब भी आकाशवाणी का जो उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, वो अभी भी कम नहीं हुआ है और आज भी इस उद्देश्य को लेकर आकाशवाणी आगे बढ़ रही है।

कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, ये आकाशवाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते

0: हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहाँ प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: गृहमंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो है सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए थे। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार

द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिक

0: पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश की 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उच्चैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना। पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से। इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार में आज आपके साथ है आपके दो साथी, मैं अर्चना चौहान
3: और मैं सोफिया खान।
2: दोस्तों, अब बढ़े चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो सोफिया, चलो तुम्हें ले चलती हूँ इतिहास के पन्नों की तरफ, क्योंकि आज है 8 जून का दिन, और 8 जून का दिन बहुत खास है इतिहास में भी, और बहुत सारी घटनाएं आज के दिन को और खास बनाती है। जैसे बात कर ली जाए 8 जून 1658 की, तो औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया और अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया, और ये बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद में जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत बदल गया था। वहीं बात कर ली जाए 1906 की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एंटी क्विटीज एक्ट के तहत हस्ताक्षर किए, और इसके अंतर्गत अमेरिका के इतिहास स्थलों पर जो पुरातात्विक संपदा थी उसमें कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ। और उसके बाद में ये जो कानूनी संरक्षण के बाद में उन ऐतिहासिक स्थलों को प्रिजर्व किया गया और लोगों के लिए खोला गया।
1: और साल 1948 की श्रोताओं बात करें तो AIR इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो मुंबई से लंदन के लिए शुरू की थी आज ही के दिन। और इसी के साथ भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने पेरिस में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था 1997 में आज ही के दिन।
0: आठ जून 1949 में मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का प्रसिद्ध उपन्यास 1984 यानी 1984 पहली बार प्रकाशित हुआ था। वहीं बात की जाए 8 जून 2004 की, तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष बाद वीनस ट्रांजिट यानी शुक्र परागमन का अद्भुत खगोलीय नज़ारा देखा गया था।

0: श्रोताओं, इतिहास की बात तो हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ और भी ज़रूरी है। जब भी हम श्रोताओं इस धरती की खूबसूरती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और नदियाँ। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर इस धरती से सारा पानी, सारे महासागर गायब हो जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ एक बंजर, सूखा और बेजान पत्थर का टुकड़ा। बिल्कुल हमारा रिश्ता समुद्र से बहुत पुराना और बहुत गहरा है श्रोताओं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम हवा को साफ रखने की बात करते हैं, लेकिन उस नीले समुद्र को भूल जाते हैं जो चुपचाप पूरी दुनिया का बोझ अपने सीने पर उठाए हुए हैं। जी हाँ, आज विश्व महासागर दिवस है और 8 जून का दिन जो है वो विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1992 में और इसके पीछे एक अवधारणा थी। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में कनाडा द्वारा एक प्रस्तावना दी गई और इस स्थापना के साथ सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासागर दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। जहाँ तक की बात की जाए महासागरों की, तो पृथ्वी के 70% भाग पर जो पानी है इन्हीं महासागरों में है और 50% ऑक्सीजन का जो उत्पादन है इन्हीं महासागरों के द्वारा किया जाता है। ये पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बेहद अहम है। तो आज विश्व महासागर दिवस के दिन हम जब भी कोशिश करें कि हम महासागरों के करीब पहुँचें तो उसमें कचरा ना डालें, उसे गंदा ना करें, उसे पॉल्यूटेड ना करें, और जो ये महासागर दिवस मनाया जा रहा है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो और ये हमारे नीले नीले महासागर हैं वो स्वच्छ रहें, पॉल्यूटेड फ्री रहें।

0: जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे का साथ ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ये सफ़र बहुत ही हसीन हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी इस जो स्मूथ ड्राइविंग है उसके ऊपर ब्रेक भी लग सकता है, और यह ब्रेक लगता है हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी जो बीमारी है उसके कारण, और ये बीमारी बहुत बढ़ सकती है अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा।
1: बिल्कुल, दिमाग जो है श्रोताओं, वो हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है, जो बिना रुके बिना थके हर सोच को कंट्रोल करता है। लेकिन जब इसमें ही खराबी आ जाए तो फिर हमारे सामने आ जाती है बहुत गंभीर चुनौतियाँ, और उन्हीं में से एक है ब्रेन ट्यूमर। हर साल आज ही के दिन यानी 8 जून को मनाया जाता है ये दिन। उद्देश्य है इसका ब्रेन ट्यूमर के कारणों, लक्षणों और समय पर इलाज के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस दिन की शुरुआत की बात करें तो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। इसके मुख्य लक्षण हैं, यानी कि अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करें। जैसे लगातार सिरदर्द हो रहा है, और वो भी गंभीर सिरदर्द हो रहा है, हाथ पैर में कमजोरी या सुनपन, बार बार दौरे पड़ना और देखने या सुनने में परेशानी, यानी ये कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा जो ट्यूमर होता है उसकी स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके आधार पर लक्षण बदल भी सकते हैं।
0: अगर शुरुआती दौर पर ही आपने सही समय पर अगर इसकी जांच करवा ली है तो आपको इसके लक्षणों के बाद में इलाज की ज़रूरत होती है, और इलाज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और इसके बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट है वो भी हमें मिलते हैं। और अगर आप नियमित जांच करवाते हैं तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, जैसे कि योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम जैसी अगर जीवन शैली को आप अपनी ज़िंदगी में

शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ स्ट्रेस कम लेना है। जी हाँ, बहुत स्ट्रेस वाली ज़िंदगी तो है, लेकिन हमें लेना कम है और हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। अगर हम ये सब करते हैं तो जो ये ब्रेन ट्यूमर है उससे निजात पा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा हल्का और बहुत ही खूबसूरत भी बना सकते हैं।

0: सोफिया, चलिए आपको ले चलते हैं चांद के पार।
1: बिल्कुल, चांद के पार तो कौन नहीं जाना चाहेगा।
0: बिल्कुल, और आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन हम बात करते हैं विज्ञान विश्व की। विज्ञान विश्व में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, और ये प्रोग्राम जुड़ा हुआ है चांद के साथ, और चांद के साथ ही नहीं चांद के पार भी, क्योंकि खगोल शास्त्री पृथ्वी से परे अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ऐसे में कई अलग अलग एजेंसियां अंतरिक्ष जो कार्यक्रम

0: है वो चलाती है। और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत है, जिसे आर्टेमिस नाम दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है 50 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद में इंसानों को फिर से चांद पर भेजना और वहाँ एक स्थायी चंद्र अड्डा यानी बेस कैंप बनाना, जिसके बाद भविष्य में मानव को चांद से आगे यानी मंगल ग्रह पर भी भेजा जा सकता है। आर्टेमिस कार्यक्रम चांद चंद्रमा के अन्वेषण को स्थायी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 1972 के बाद अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसानों को चांद पर उतारना, चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप और उसकी कक्षा के गेटवे नामक स्पेस स्थापित करना और चांद को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है।
1: और इसके प्रमुख चरणों की बात करें तो आर्टेमिस फर्स्ट, जो कि 2022 में हुआ था, ये एक मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। इसमें रॉकेट ओरियन कैप्सूल को बिना इंसानों के चांद के चक्कर लगाकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया गया था। और आर्टेमिस सेकेंड 2026, जो अभी अप्रैल में हुआ था, ये पहला मानव युक्त मिशन था जिसमें चार अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया और सफलतापूर्वक जो है वो पृथ्वी पर लौटे थे। और बात आर्टेमिस 3, जो 2027 के अंत में प्रस्तावित है, ये मिशन पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें चंद्र लैंडर के साथ डॉकिंग प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। और श्रोताओं, आर्टेमिस 4 जो है वो 2028 तक प्रस्तावित है और इसके तहत अपोलो युग के बाद पहली बार इंसान फिर से चंद्रमा की सतह यानी दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेंगे।
0: तो इस तरह से हम चलते चलते पहुंच जाते हैं चांद पर।

0: जी हाँ दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और यह परिवहन ही है जो हमें इधर से उधर पहुंचाता है। लेकिन जब परिवहन की बात आती है तो बात आती है वाहनों की और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की। और ख़ास बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसा ईंधन जो थोड़ा लचीला है, यानी है फ्लेक्सिबल, लेकिन इसे कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल। और जिस तरह धरती पर पेट्रोल की खपत और प्रयोग बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है, ऐसे में वैकल्पिक ईंधन पर विचार किया जा रहा है और फ्लेक्स फ्यूल एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर सामने उभर रहा है। ये ऑटोमोबाइल ईंधन है जो पेट्रोल और एथेनॉल जैसी नवीकरण जैव ईंधन का मिश्रण है। इस ईंधन का उपयोग करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंजन डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो वाहनों को फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल्स है, यानी FFV कहा जाता है, जो एक ही टैंक को 100% पेट्रोल, 100% एथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चला सकते हैं।
1: और पारंपरिक पेट्रोल कारों के विपरीत अगर बात करें तो जो आमतौर पर E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल जैसे कम एथेनॉल मिश्रण तक सीमित होती है, FFV जो है उसमें विशेष इंजन हार्डवेयर होता है और जो E85 संभालने के लिए
0: डिज़ाइन किया गया
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल जैसी उच्च सांद्रता होती है उस वाले अल्कोहल को संभालने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है श्रोताओं, उसमें एक ईंधन संरचना सेंसर लगा होता है जो ईंधन टैंक में पेट्रोल और एथेनॉल के सटीक अनुपात का पता लगाता है। इसके इंजन का जो प्रबंधन करने के लिए इंजन के स्पार्क टाइमिंग और इंजन इंजेक्शन को वास्तविक समय में स्वचालित रूप में समायोजित भी करती है और इससे जो उसका प्रदर्शन है वो सुनिश्चित होता है।
0: जी हाँ, फ्लेक्स फ्यूल में जैव ईंधन यानी गन्ने या मक्के से बना एथेनॉल का उपयोग होता है और इसे आयातित कच्चे तेल पर किसी देश पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। एथेनॉल के उच्च मिश्रण का उपयोग कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे ईंधन शुद्ध जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक टिकाऊ बन सकता है।
1: और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है वो दूसरे वाहनों से उसको अलग दिखाने के लिए इसके जो निर्माता हैं इस पर फ्लेक्स फ्यूल लोगो यानी पीले रंग के पेट्रोल पंप या मैनुअल देखकर इसकी पहचान कर सकते हैं।
0: जहाँ तक की बात की जाए गैसोलीन की, जो कि हम अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है, और फ्लेक्स ईंधन वाहन इसे कम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है जो हमारे सामने पेश हो रहा है।
2: बाजू

0: जो समझ आए उसी की मची धूम, आ जो समझ आए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: ही फिटनेस का भी ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
1: जी हाँ, क्यों ये हिस्सा ज़रूरी है? इसका कारण है कि हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है। चोट से बचने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करना, रेगुलर वर्कआउट करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
0: और इसको कब और कैसे करें, दिन भर में कभी भी कर सकते हैं इसको श्रोताओं, क्योंकि बस ये देख लेना जरूरी है उस टाइम कि हमें हाथ पैर फैलाने की जो जगह है वो मिल जाए। अर्चना जी अभी भी कर सकते
1: जी बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सोफिया, और जब भी आपको थोड़ी सी जगह मिले आप स्ट्रेचिंग कीजिए। आप जब सोकर उठते हैं तो, या सोने जाने से पहले भी इस काम को कर सकते हैं, और जैसा तुमने कहा कि बहुत छोटी सी जगह मिले जहां पर आप अपने हाथ पैर फैला सकते हैं तो आप स्ट्रेचिंग करते रहिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जब लगातार आप बैठे रहते हैं उसमें आपकी जो मांसपेशियां होती है वो अकड़ जाती है, और ऐसे में स्ट्रेचिंग करना बहुत फायदेमंद होता है।
0: और काम के बीच में जो छोटा सा ब्रेक मिलता है उसमें भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और इसके फायदे हैं, ज्यादा मेहनत के बिना ही ये शरीर के अंगों की गति को बनाकर रखती है, और जो हमारा खराब पॉस्चर है उसकी प्रॉब्लम से भी हमको इससे निजात मिलती है, तनाव दूर होता है, और स्ट्रेचिंग से टाइट हो चुकी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती है, और इससे होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है।
1: ज़्यादा ताकत से स्ट्रेच करने पर किसी स्ट्रेच करने की जो दर्द है उसको कम करा जा सकता है। अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचिंग की जा सकती है। साथ ही साथ तेज़ कदमों से टहलना भी स्ट्रेचिंग का एक रूप हो सकता है, और अगर आप अपनी जगह पर खड़े रहकर जॉगिंग करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेचिंग का ही रूप होता है। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेचिंग को शामिल करके खुद को फिट रख सकते हैं।

बिल्कुल श्रोताओं, अब खास बात तो हो चुकी है और अब प्रोग्राम में अब काम की बात भी कर लेते हैं। और काम के बीच में काम की बात तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजी लाइफ और हमारी जो ख़राब लाइफस्टाइल है उसके कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं श्रोताओं, वो कठोर हो जाती है और इनमें रहता है दर्द। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में की जाए नॉर्मल एक्सरसाइज यानी स्ट्रेचिंग, उसका रोल बहुत ही अहम हो जाता है। साथ

0: श्रोताओं, आज है 8 जून का दिन और अब बात कर लेते हैं आज से जुड़े उन लोगों के बारे में जिनका आज के दिन जन्म हुआ। आज ही के दिन जन्मे एमबी जाबिर, इंक एंड फील्ड एथलीट, जो कि मुख्य रूप से 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वे 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। 2024 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वहीं बात कर ली जाए उनकी, जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, उसमें पहला नाम है मदुरई मणि अय्यर का, कर्नाटक संगीत के गायक जो अपनी अद्वितीय शैली के लिए प्रसिद्ध थे। 20वीं शताब्दी के दौरान ये कर्नाटक संगीत के प्रमुख गायकों में गिने जाते थे।
1: और इसी कड़ी में याद कर रहे हैं आज मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता रहे हबीब तनवीर को। उन्होंने लोकधर्मी रंगक्रम को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया श्रोताओं, और भारतीय रंगमंच को एक नया नाम दिया, नया मुहावरा दिया। इन्होंने अपनी लंबी रंग यात्रा में 100 से भी ज्यादा नाटकों का मंचन और सृजन किया। उनका कला जीवन जो है वो बहुत ही बहुआयामी था। उनके नाटक आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, द ब्रोकन ब्रिज, राज रक्त जो हैं वो मुख्य हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में, पद्मश्री 1983 में, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1972-78 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे श्रोताओं। राही और फुटपाथ, इन फिल्मों की पटकथा और संवाद लेखन में उनका अहम योगदान था। चरणदास चोर, उनके अपने ही विश्व प्रसिद्ध नाटक पर आधारित फिल्म के गीत और पटकथा हबीब तनवीर ने लिखी थी। इनका निधन आज के दिन यानी 8 जून 2009 को हो गया था। और श्रोताओं, कई फिल्मों में इन्होंने जो है छोटे मोटे रोल किए थे, जैसे ब्लैक एंड वाइट जो फिल्म है उसमें इन्होंने एक रोल किया था और इसमें नजर आए थे वो। और इसी फिल्म से जो है वो आपको ये गाना सुनवाते हैं।

अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के ठीक 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में पहली लोक रचना सुने श्रोताओं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

लोक संगीत में अगली लोक रचना सुनिए श्रोताओं, मोती खान की आवाज में।

इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला गीत सुनिए श्रोताओं, आतिफ असलम की आवाज़ में।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, सवेरे के 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला नगमा पूर्णिमा फिल्म से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

मेरे सनम, इस फिल्म में आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोंसले का गाया ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है ओ पी नैयर ने।

ये पुराने सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। दिल ही तो है यह फिल्म का नाम, जिसका नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और तर्ज बनाई है रोशन ने।

0: के सब दीवाने तुझको ले जाएगा दीवाना।
1: अभी आपने सुना है लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया ये गीत, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। फिल्म का नाम था श्रीमान फंटूस। और आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही संगीतबद्ध किया हुआ ये नगमा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए आपको अनजान का लिखा ये गीत सुनवाते हैं, जिसे संगीत दिया है GS कोहली ने। आवाज़ें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। फिल्म का नाम नमस्ते जी

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गाना, जिसमें गीत और संगीत प्रेम धवन का है। फिल्म का नाम शहीद।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये नगमा आपके लिए साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन की तर्ज। फिल्म का नाम ताजमहल।

लव इन टोक्यो, यह फिल्म का नाम जिसका नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और तर्ज शंकर जयकिशन की।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म में आपने अभी सुना मोहम्मद रफ़ी को। शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद की तर्ज थी। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये पुराने सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का ही गाया ये नगमा। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है। फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ चुनिंदा कलाकारों की गाई कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं भूंगर खा लंगा पार्टी की गाई इस रचना के साथ।
1: जा झरी गहरों

جسان شریک شهر میں سنی گھر

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं बीजल खां की गाई ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। आज हम आपको विविध कलाकारों की गायी कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कालूराम प्रजापति की गायी ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए श्रोताओं, आप प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको आज कुछ चुनिंदा गायकों की चुनिंदा गजलें सुनवा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं प्रद्युम्न शर्मा की गाई इस गजल के साथ। कलाम कैसर उल जाफरी का है और मौसिकी प्रद्युम्न शर्मा की ही है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं मिताली सिंह की गाई ये गजल। नसीम अजमेरी का कलाम है और भूपेंद्र सिंह की मौसिकी और भूपेंद्र सिंह का साथ मिला है मिताली सिंह को।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। श्रोताओं, आज हम आपको कुछ चुनिंदा गुलकारों की चुनिंदा गजलें सुनवा रहे हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मेहदी हसन की गाई ये गजल,

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और श्रोताओं, यह आज के सुगम संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। विश्नी मेहरोत्रा की गाई ये गजल उस्ताद फैयाज अहमद खान का कलाम है।

श्रोताओं, इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूणकरणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के

0: उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांधन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

आज आपने जानकारी दी रहा का भाई उन तकनीक अपनावता था का आपा खरीफ रीज की फसलारी पैदावार है उन आपा किन तरह सो बढ़ा सका। किसान भाया जीव आपा बात करा के अपन अठिने जोधपुर खंड महीने आपा बाजरो लेवा तो बाजरे जी की किस्म है वह है MPMH 17 HHB 67 2 RHB 177 HHB 299 RHB 234 इन रहाते आप RHB 223 बीज की किस्म है अभी आप लिया करा। हम जो आप बात करी कि भाई MPMH 17 आप लेवा तो इन जी की पकाव अवधि है आ गुणसी 80 दिन महीने हो जाए करे और उपज जी की है वह 1 हेक्टर महीने 26 से 28 क्विंटल री उपज दिया करे। बीज री दर आप बात करा इन किस्म री आप तो लंगे टंगे आप 4 किलो जी को बीज है वो प्रति हेक्टर में आप काम में लिया करा। हमें वो पहला आप उर्वरक जी को है वो भी आपने खेत्र में देवनो पड़े। हमें जो आप DAP और जो को यूरिया है इंडो जी को मिशन है वो 65 और 40 किलोग्राम जी को है वो आप ले लिया करा। और खड़ी फसल महीने मान लो जे आप यूरिया देवनी चवा तो 65 किलो प्रति हेक्टर ही दर्शो आप दे सका। हम एक बात आवे की भाई ए बाजरी जी की किस्मा हमारा पा जानकारी ली यहाँ इंडी जी की कतारा और जी की पौधारे बीच जी की दूरी है कतारा जी की है वह 40 से 45 सेंटीमीटर रखा आप और पौधों पौधारे जी की दूरी है वह 10 से 15 सेंटीमीटर बीच में आप रखा। हम एक विशेष बात आवे है की भाई इन किस्मारा महीने भात भादरा जी की बीमारियां है इनू बचाव अपने करिया करे तो कोशिश अपने आईज राखनी है की भाई जी की अपा किस्म बाजरी ले रही यहाँ तो उनसु जी की बीमारियां है वे अपने नहीं होया करे। जो हमें MPMH 17 जी की है इन जी को जोगिया रोग रोदिया होया करे और सिट्टा जी का है रोया रुक्त होया करे। इन हाथे हाथे आप जो बात करा की भैया HHB 67 2 है तो इन अगेती और पछेती बुआई वास्ते आप बहुत बढ़िया मानी जा करे। RHB 177 है तो आ जोगिया रोग रोधी है और साथ सूखा सहनशील ज्यादा रहा क्या करे मान लो मैं आग फाचो वह तो भी आ मतलब खड़ी रिया करे। तो कोशिश अपन आ रखनी की भाई जिकी भी किस्म आप काम में ले रहा है उन महीने उन्नत जिकी तकनीक है वो अपने काम में लेनी चाहिए। हमें आ तो बात हुई की भाई बाजरा री कई किसान भाई चारा रो उत्पादन लेनी चाहे तो जवार भी आप वावे दानो भी मिल जाए और साथ पशुआर

अबार मान लो हमें ले तो हेंगू पहला बात आवे भाई गवारी किसी किसी किस्म आपा अपने खेतर महीने आपा ले सका। गवार महीने HG 220 है, एंडेज की पकाव अवधि है वह 90 मुलेर 100 दिनार बीच में या करे। उत्पादन जी को है प्रति हेक्टर 8 उलेर 9 क्विंटल रिया करे। इन रहते RGC 1017 है, पकाव अवधि 92 उलेर 99 दिन तई और उत्पादन जी को है वो 10 उलेर 14 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। गवार महीने RGC 1031 है, जिन्हें गवार क्रांति नाम आपा जाना, इनकी पकाव अवधि 110 उलेर 114 दिन, 11 उलेर 16 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन जी को है वो इन किस्म सु होया करे। किसान भैया गवार महीने आपा भले बात करा भाई किस्म है RGC 1055, इन्हें गवार उदय नाम जानी जा करे, इनकी पकावरी जी की अवधि है वह 90 उलेर 100 दिन तय होया करे और इन किस्म सु उत्पादन जी को है वो 11 उलेर 22 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। गवार महीने किसान भाई एक किस्म और काम में ले सके RGC 1038, 105 दिन की पकाव अवधि रिया करे और उत्पादन की बात करा 11 उलेर 22 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। गवार महीने किसान भाई RG 1033 भी काम में ले सके, पकावरी जी की अवधि है 95 उलेर 100 दिन तय रिया करे और इन किस्म सूजी को फसल उत्पादन है वो 15 उलेर 25 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। हमें जीव आपा गवारी किस्म है आपा भाई हाँ मान लो तो हमें बीजरी जी की दर है वो कितो रहना चाहिए 15 उलेर 20 किलो जी को बीज है वो प्रति हेक्टर वास्ते घणो रिया करे। और हम जो महीने आप बात करा तो बढ़िया आपा DAP जी की है वह 80 किलोग्राम जी की है प्रति हेक्टर रूप में मैंने फसली बुआई करा उन पहला आपा दे सका। और हमें कतारू कतारी जी की दूरी है वह 30 सेंटीमीटर और पौधों पौधा जी की दूरी है वह 10 सेंटीमीटर आप रखा, जिनसु बढ़िया आप रहे पौधों जी को गंवारो है विस्तार करे और फलियां भी बढ़िया बाद में आवे। हमें एज की गवारी आपा किस्मा ली हाँ तो अन खासियत आ है कि भाई जीवाणु पत्ता अंगमारी रोग है जड़गलन रोग है इन प्रति प्रतिरोधी हुआ करे। इन हाथे आते ए किस्म आप ले तो अर्ध शुष्क और जटे मान लो बरसात कम वे वोटे आप बढ़िया पनप जा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी बढ़िया हो जा और जटे असिंचित क्षेत्र है वन वास्ते भी ठीक रिया करे। और हेंगो मोटी बात आ है कि ऐजे की किस्म है रोगर है प्रति प्रतिरोधी रिया करे और भी कोई भात मात्रा मान लो गंवारा जी का रोग है उनारे प्रति रोग प्रतिरोधी रिया करे। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई हमें आपा खरीफरी फसल पैदावार ले आवा तो उन्नत तकनीक अपनावता थका आपा खरीफरी फसलारी जी पैदावार है वाकिन तरह सु बढ़ा सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर, और आज आप सागे है दो रेडियो संगनिया आराधना जोशी
1: और शीतल राठौड़। तो सभा ने आज आकाशवाणी रे 90 साल पूरा होने री खुशी में मोकली मोकली बधाई और शुभकामनावा।
0: बिल्कुल, आज आकाशवाणी रो है जन्मदिन। आकाशवाणी 90 साल जिका है आपरा पूरा कर लिया है, तो आकाशवाणी आज और भी जवान हो गई है।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

और आज एक ऐडी यात्रा जिनमें आवाजा नहीं पण करोड़ों भारतीय री यादा भावना सपना और भरोसो समायो है। तो आओ समय री अनूठी यात्रा पर चाला और सुना सुरा रे ई साथी री कहानी जो पीढ़िया ने जोड़िया राख्यो है। आपरो आपनो रेडियो आकाशवाणी।

और आकाशवाणी रा आज 90 साल पूरा हो रहा है, तो आज सिर्फ एक संस्था री सालगिरह कोनी पण विश्वास अपनाया तर संवेदना रो उत्सव है, जिको 90 वर्षा सु करोड़ा दिला ने जोड़तो आयो है।

0: 8 जून 1936 ने इसने नयो नाम मिल्यो ऑल इंडिया रेडियो। बाद में महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें बड़ो ही सार्थक और अभूतपूर्व नाम दियो आकाशवाणी, यानी आकाश सु आवन वाली ध्वनि।
1: सुरारी सरिता बहती रही, तरंगारो संसार रयो, घर घर मन मन ने जोड़तो रेडियो साथी हमेशा ही भरोसेदार रयो।

0: 1956 में आधिकारिक रूप से आकाशवाणी ने नाम मिल गयो आकाशवाणी।
1: सन 1957 में जब आकाशवाणी नाम बदल गयो हो तो पूरे देश ने वो एक सूत्र में बांधने रो काम करियो और इस साल सु ही विविध भारती री सेवा शुरू हुई। फिल्मी गीत, नाटक, झलकी, मनोरंजन रा कार्यक्रम इन्हें घर घर री पसंद बना दियो।

साठ और सत्तर दशक में ट्रांजिस्टर रेडियो के रूप में आकाशवाणी गांव गांव तक पहुंचो और खे चौपाल अरगावरी मेड़ी और लोगारो साथी बनियो।

80-90 दशक में FM तकनीक रहने सु रेडियो आधुनिकता की ओर कदम राख्यो, युवा पीढ़ी और शहरारी ओर प्रसार हुयो, गांवारी लोक धिना ने शहरा ताई और शहरारी जानकारी ने गांवा ताई पुछायो।

0: स्टेशन कोयला ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा।
1: 90 वर्षा में तकनीकी बदली, यंत्र बदलिया, वातावरण बदलियों पर आकाशवाणी री सार्थकता, सहजता और मिठास सदैव बनी रही।

0: करियर की शुरुआत हुई आकाशवाणी के। कुछ अपनी पारिवारिक जरूरतों के चलते मैंने 2 साल में ही वहां से अपना तबादला, मेरी अर्जी का उन्होंने स्वीकार किया और मेरा तबादला नागपुर हो गया। नागपुर में मैं नागपुर का बेसिकली रहने वाला हूँ, तो नागपुर में मैंने 19 साल बिताए हैं आकाशवाणी में।
1: अच्छा।
0: और इस तरह से रेडियो की और उद्घोषणा की दुनिया में मेरी शुरुआत जो है ऐसे हुई थी।
1: तो अगर हम बात करें कि रेडियो की यात्रा सिर्फ एक सफर ही नहीं है, यादों का भी खजाना माना जाता है, तो वेद भारती से जो जुड़ा हुआ आपका, तो उसके साथ आपकी कई यादें भी रही होगी, तो कोई ऐसा पल है जिसे आप आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं?
0: जी, बहुत से पल है। और मैंने आपको बताया, मैं पहले आकाशवाणी मुंबई में था, वहां से फिर मैंने आकाशवाणी नागपुर में तबादला लिया, और वहां से फिर मैं पिछले 11 सालों से भी विविध भारत में हूँ। तो यादगार पल बहुत से हैं। और अपने शुरुआती दिनों की मैं एक बात करना चाहूंगा, जब मैं आकाशवाणी मुंबई में था, बिल्कुल नया था, मुझे मुश्किल से 4-5 महीने 6 महीने हुए होंगे, तो वहां के गलियारे में मैं अपनी ड्यूटी से संबंधित कुछ काम के लिए जा रहा था, तो एक स्टूडियो से हमारे सहायक केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी साहब बाहर निकले और उनके साथ जाने माने शायर निदा फाजली साहब निकले।
1: जी।
0: तो मुझे बहुत मैं तो जानता नहीं था उन्हें, लेकिन रेड्डी साहब ने रोक के मुझे बताया, जानते हो कौन है सर? नहीं। तो निदा फाजली साहब है। अरे क्या बात है, मैं तुरंत झुक गया। तो और फाजली साहब का नमस्कार करने के लिए मैं झुका, तो उससे पहले वो नमस्कार करके ऐसे बड़ी विनम्रता से उन्होंने मुझे नमस्कार किया। मतलब सर, आप इतने महान हैं, इतने बड़े शायर हैं। बोले नहीं, हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ है, और मैं हर इंसान के अंदर के कलाकार को मैं नमस्कार। बहुत बड़ी बात उन्होंने मुझे सिखाई उस दिन। और ये जो बड़े हम जिनको कहते हैं ना, वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत विनम्र है, बहुत सादगी है इनके अंदर, और ये बहुत बड़ी बात मैंने उनसे सीखी उस दिन। और उसके लिए तो क्या कहूंगी, हम में से हर एक को ये पहले सोचना चाहिए कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन जाते, अच्छे कलाकार या जो कुछ भी अपने जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के अच्छे प्रोफेशनल हम तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनते।
1: बिल्कुल सर।
0: और बहुत से ऐसे फिर यादगार पल हैं। आकाशवाणी नागपुर में भी मैं वहां पर बायलिंगुअल काम करता था, मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम चलता था। कई कलाकारों से मिलना हुआ, बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, और वहां हमारी एक वरिष्ठ घोषिका थी प्रभावती खारे, वो बताया करती थी, नागपुर आकाशवाणी की शुरुआत 1948 में हुई, बहुत पुराना स्टेशन। तो वहां जब उन दिनों में लाइव ट्रांसमिशन हुआ करता था, रिकॉर्डेड नहीं होता, ध्वनि मुद्रित नहीं होता था प्रसारण, तो बेगम अख्तर जी आई, तो वो बता रही थी कि मैं चूंकि मराठी उद्घोषिका हूँ और मुझे उनके उस कार्यक्रम की उद्घोषणाएं देनी, तो मेरी समझ में नहीं आता ये शब्द जो है बेगम है या बेगम है, तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि मैंने बेधड़क सीधे उनके पास पहुंच गई कि मैं आपको बेगम कहूँ या बेगम कहूँ, क्या है उच्चारण? तो मुस्कुरा के बोली, बेटी दुनिया में बेगम तो कोई नहीं है, आप मुझे बेगम ही कहिए। हाँ, ये बात सीखने वाली बात उसमें ये है कि हमें अगर कोई शंका है तो हम सीधे झिझकना नहीं है। अरे बड़े कलाकार हैं, मगर हम सीधे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक विनम्र होते हैं।
1: जैसे अभी आपने जैसे पूछने की ही बात कही है, तो हम भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि जब हम रेडियो पे कोई भी कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं, तो उस वक्त जो स्क्रिप्ट का जो महत्व होता है वो कितना होता है?
0: स्क्रिप्ट का मैटर जितना भी हो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम रेडियो के इस तरफ जहाँ से प्रसारण किया जा रहा है ना, हम माइक्रोफोन पे बोल रहे हैं, हमारे पास मटेरियल है, प्रोग्राम मटेरियल, कार्यक्रम प्रसारण करने के लिए वो कोई वार्ता होगी, कोई कविता होगी, कोई गाना है ना, जो कोई भी कार्यक्रम है उसके अनुसार। मगर हमेशा एक बात याद रखनी है कि हम जो बोल रहे हैं केवल वो सुनने के लिए, रेडियो के उस तरफ जो श्रोता बैठा है वो केवल हमें सुनने के लिए नहीं बैठा है, हमेशा इस बात को याद रखना है। इसलिए हमारी स्क्रिप्ट जो है, हमारी संहिता है, वो बहुत सही हुई होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थपूर्ण बात हमें कहनी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना। अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमेशा एक आम आदमी के नजरिए से सवाल करने, ना कि कोई एक्सपर्ट बन के हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं और हम खुद ही कोई डॉक्टर की तरह उनसे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम भले ही कोई बड़े सुरमा है अपने क्षेत्र, है ना, बहुत सी हमें जानकारी है, चाहे

0: हम फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत हमने खोजबीन कर ली है, जो सामने बड़ा कलाकार बैठा है उसके बारे में जान लिया, उसकी फिल्मों के बारे में जान लिया, उसका इतिहास जान लिया, फिल्मों का इतिहास हमें मालूम, अरे मगर उस पार्श्वभूमि को याद रखते हुए हम पूछेंगे तो हम खुद अपने आप में एक एक्सपर्ट हो जाएंगे और हमारे सवाल तो फिर लंबे लंबे होंगे ना। हमें आम आदमी जो श्रोता सुनने वाले हैं, जो कार्यक्रम सुनने वाले हैं, उनकी नजर से सवाल क्या हो सकता है, हमेशा सवाल वैसा होना है, क्योंकि रेडियो जो खोलता है ना वो अपने मनोरंजन के लिए, अपने मतलब के लिए, उसका स्वार्थ इतना है कि उसका मनोरंजन हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो हमें परोसना है थाली में उसके और श्रोता जिसके लिए हम परोस रहे हैं उसके बीच से अपनी बात कह के तुरंत हट जाना। गाना बजा रहे हैं, गाने के बारे में जानकारी दी, अलग हट के गाना सुना, ना कि गाने के बारे में आज 10-15 लाइनें बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ने रेडियो खोला है वो हमें सुनने के लिए, उसने अपने मनोरंजन के लिए खोला है, तो उसका मनोरंजन पूरा हो और वो कहीं किसी क्षण विचलित ना हो, इरिटेट ना हो जाए हमारे, का बहुत ध्यान रखना।
1: जी बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो जो लोग रेडियो के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए, खासकर जब हम लाइव कार्यक्रम दे रहे होते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रख के लाइव प्रस्तुति है जो हमें देनी चाहिए।
0: अब ये तो मतलब ये हमारा अंतर्गत सवाल है, आकाशवाणी के अंदर का सवाल जो लोग प्रेजेंटर्स हैं जो माइक्रोफोन पे बोलते हैं।
1: बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप ने काफी काम किया है, आपको काफी अनुभव है और हम अभी सीख रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस पे हमें कोई ना कोई अच्छे सुझाव है वो दीजिए।
0: खैर, सुनने वालों को तो ये सब बातें समझ में नहीं आती, मगर जो लोग रेडियो में काम करते हैं तो उनके लिए है कि हमारे यहाँ सजीव प्रसारण में हम लोग एक क्यूशीट कार्यक्रम तालिका होता है, हम उसे फॉलो करते हैं ना, वो हमारे लिए अंतिम शब्द, क्यूशीट में जो लिखा है उसके मुताबिक सब जाना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो क्यूशीट अप टू डेट है कि नहीं, जब भी हम प्रसारण कार्य के लिए आते हैं तो वो देख लीजिए क्यूशीट में सारी चीजें लिखी है कि नहीं। ड्यूटी रूम में ड्यूटी ऑफिसर के साथ में बैठ के हम लोगों ने जो भी कार्य सजीव प्रसारण की तैयारी की है, अनाउंसमेंट लिखी है, तो वो समय के मुताबिक सब कुछ क्यूशीट में, एक क्यूशीट हमारे हमें अंदर मिलती है स्टूडियो में, उसमें सारी बातों की एंट्री है नहीं है वो देख के चेक करके उसके अनुसार कर लेना चाहिए, उससे अपडेट कर लेना है ना। कई बार होता है कि कोई इम्पोर्टेंट रिले है, दिल्ली से कोई VIP ब्रॉडकास्ट होने वाला है, हमारी उसकी एंट्री अगर स्टूडियो की शूट में नहीं है तो फिर वो गलती हमारी मानी जाएगी, तो पहले उसको अपडेट कर लें और फिर जाके हम प्रसारण स्टूडियो में बैठेंगे और उस क्यूशीट को फॉलो करते हुए उसके अनुसार अपने कार्यक्रम जो है वो प्रसारित करेंगे। तो क्यूशीट अंतिम शब्द है हमारे लिए, उसको स्टिक टू दैट, बस उससे जुड़े रहना है। और पहले तो खैर व्यवधान होता नहीं था किसी तरह का, क्योंकि हम एक बार अपना प्रोग्राम मटेरियल लेके स्टूडियो में गए तो पूरी तरह से जब तक प्रसारण खत्म नहीं हो जाता, सभा समाप्त नहीं हो जाती, हम लोग उसमें डूबे रहते थे, मगर अब हमारे हाथ में हमें विचलित करने का एक बहुत बड़ा साधन आ गया है, वो है हमारा मोबाइल फोन, जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है, खजाना है इसका, डिस्टर्बेंस का। अपना मोबाइल फोन या तो बंद करें या उसको साइलेंट मोड पे डाल के अपने बैग में डाल दो, कहीं अलग रख दो उसको, फ्लाइट मोड में डाल। अगर हम उस मुगालते में रह जाते कि अरे हमारा तो ध्यान है, हमें तो पूरा मालूम है, किसी पूरी याद है, किस वक्त क्या जाना है सब मालूम है, और उसके बीच में हमने एक गाना बजा के मोबाइल खोल लिया, तो हम उस मोबाइल में घुस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उस मोबाइल से दूर रहें और पूरा ध्यान अपने क्यूशीट के मुताबिक प्रसारण पे रखें तो सब अच्छा ही होगा।
1: बिल्कुल सर, तो जैसे सर हम सभी जान रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष हैं जो पूरे हो रहे हैं, तो इस विशेष अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी एट 90 यानी 9 दशक पूरे हो चुके हैं, और इसमें क्या कहें, ये जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति और आकाशवाणी की अपनी संस्कृति है, इसकी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बार नागपुर आकाशवाणी में परिसंवाद हुआ था और उसमें मुझे बोलना था कि उसकी शुरुआत मुझे करनी थी कि आकाशवाणी की संस्कृति का क्या अर्थ है, इससे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने कहा एक ही बात, हम जब यहाँ नियुक्त हुए और उद्घोषक के पद के लिए हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो एक ही बात सिखाई गई थी कि आकाशवाणी के कार्यक्रम जो सुनने वाले हैं वो अलग अलग आयु के श्रोता हैं, कोई छोटा है, छोटा बच्चा भी है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई युवा है ना, कोई मध्यम वर्ग है, और हर एक का जो है बैकग्राउंड अलग है, पार्श्वभूमि अलग है, सब अपनी तरह से सुनते हैं, तो हमारी किसी भी बात पे, इसलिए हमें क्या बोलना है इससे पहले ये सिखाया जाता है कि क्या नहीं बोलना है, ये आकाशवाणी की संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति है जो सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है, इस संस्कृति का और संवेदनाओं और आवाजों की जो एक ये अमूल्य विरासत है, विरासत का हम एक भाग

0: है, हिस्सा है, इसका हमें बहुत गर्व है। और 90 वर्ष अपने 9वें दशक में आकाशवाणी अवसर पर इससे जुड़े हुए, आकाशवाणी से जुड़े हुए तमाम जितने लोग हैं जो माइक्रोफोन के इस तरफ काम कर रहे हैं और जो रेडियो के उस तरफ सुन रहे हैं, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद भी देता हूं।
1: श्रोताओं, ए हा देश की सुरली धड़कन, वीर भारती सुजैन पात्रेकर सर,
2: हमें समय देने के लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है।
0: धन्यवाद।

0: आ 90 वर्षा में बिल्कुल तकनीक बदली, माध्यम बदला, लोगारी पसंद बदली, कार्यक्रम भी बदलिया, पण एक चीज को नहीं बदली, पाही आकाशवाणी रो विश्वास अर साथ।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी रो मूल मंत्र रो अर्थ है अनेक लोगों के लिए हित के लिए, अनेक लोगों रे सुख रे लिए।
0: ओ वाक्य आकाशवाणी रो प्रतीक चिन्ह पर अंकित है, जो इन्हें सार्वजनिक सेवा प्रसारण रे मूल दर्शन ने परिभाषित करे है।
1: आकाशवाणी री एक अनूठी पहचान है इरी सिग्नेचर ट्यून, जिकन आप संकेत ध्वनि रे रूप में जाना।
0: राग शिवरंजनी पर आधारित 30 सेकेंडरी मधुर धुन ने 1936 में वॉल्टर कॉफमैन कंपोज कियो हो।
1: ई धुन में तानपुरी री गुंज रे सागे वायलिन री भी मधुर तान रो समावेश है।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर और आज फोन लाइन द्वारा अपारे सागर एक इसी आवाज मधुर जिकी के वहाँ बाजुड़ चुकी है जिकी राजस्थान री मिट्टी री खुशबू ने आप री आवाज में पिरो बरसा तक श्रोताओं के दिल तक पहुँचाई और आज वही सुरीली आवाज देश की धड़कन कही जाने वाली विविध भारती रो हिस्सो बन पूरे भारत में आप री आवाज रो जादू बिखेर रही है। तो आकाशवाणी जोधपुर एक गणगौर माई मंदाकिनी जोशी जी आप रो हेत हरक सु स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आराधना मुझे याद करने के लिए, आपने एक बार फिर मुझे याद किया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: मंदाकिनी जी आपकी आवाज बरसा सु श्रोताओं के दिला ने चूरी है और आज आपसे बात करने रो और को सुनहर अवसर मिलो है और बेहद सुखद है। तो सबसे पहले जानना चाहवाला कि रेडियरी इन आवाज की दुनिया से आप जुड़ाव किया हो।
1: आराधना, ये एक सवाल ऐसा है जिसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है और उन वर्षों को कुरेदना पड़ता है जब आप बिल्कुल युवा होते हैं और नए नए कॉलेज से निकले होते हैं, यही कहीं की पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में और आपको पता चलता है कि

0: आकाशवाणी की दुनिया में आप अपनी वार्ताएं दे सकते हैं, वहां जाकर प्रोग्राम दे सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मेरे पिता एक लेखक थे, महेश चंद्र जोशी, जिनकी कहानियां बरसों से आकाशवाणी से आती रही थी। चाहे आकाशवाणी बीकानेर की बात करें या आकाशवाणी जयपुर से उनके नाटक आते थे, तो यूं कह सकती हूँ कि बचपन से ही, बहुत छोटेपन से ही मेरा जुड़ाव रेडियो से हो चुका था। मैं कार्यक्रम सुनती थी, तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं अपनी वार्ता वहां दे सकती हूँ। मैं लिखना मैंने शुरू किया था और मेरे पिता ने ही मुझे बताया कि तुम अपनी वार्ता के जरिए आकाशवाणी में जा सकती हो। तो मुझे याद है कि मैं अपनी वार्ता लेकर आकाशवाणी बीकानेर गई थी और वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने मेरी वार्ता को पढ़ा था और कहा था कि आपने अच्छी लिखी है और आपको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वो युववाणी कार्यक्रम होता था, युवाओं का कार्यक्रम। तो ऐसे ही मेरी आकाशवाणी के लिए शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे कार्यक्रम से जुड़ती गई। और एक समय ऐसा आया जब वहाँ मैं आकस्मिक उद्घोषक के रूप में काम भी करने लगी और बाद में मैं परमानेंट अनाउंसर के रूप में भी।
1: बिल्कुल जी, अभी आप बोला कि आप एक उद्घोषक के रूप में काम करे हो बरसा तक, तो हर सफर में अनगिनत अनुभव और सुनहरी स्मृतियां जी के वह अपन सागे होया करे। तो एक उद्घोषक के रूप में जब आप काम कर रहे हैं, तो कोई खास अनुभव ऐसा हो जो को आज आप श्रोताओं सागे साझा करना चाहोला?
0: अनुभव तो आराधना ऐसा है, आकाशवाणी की दुनिया इतनी बड़ी है, एक आकाशीय दुनिया है ना, बहुत बड़ा आकाश है ये दुनिया, जहाँ पर आप हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, हर दिन कुछ न कुछ देखते हैं, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में घटित होता है बहुत अच्छा, जिससे आपकी जिंदगी एक अच्छी मतलब अपनी राह पकड़ लेती है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। जब हम आकस्मिक उद्घोषक के रूप में काम करते थे, तब बड़े बड़े कलाकारों की कंसर्ट्स होती थी और हमारे अधिकारी हमें बोलने का मौका देते थे उस कार्यक्रम में, उन कार्यक्रमों में, चाहे वो बच्चों के होते थे या रत्नों के कार्यक्रम होते थे। बड़े बड़े शायर आते थे, क्लासिकल सिंगर आते थे और लोक संगीत के गायक गायिकाएं आती थी। तो बहुत सारी कंसर्ट पूरे आकाशवाणियों में हुआ करती थी, आज भी होती है, लेकिन उस वक्त हमें चांस मिलता था तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इतने बड़े बड़े कलाकारों के लिए हम अपनी उद्घोषणाएं करते थे, तो वो मंच मुझे आज भी याद है जब मैंने बहुत सारे कलाकारों के लिए उद्घोषणाएं की और बहुत मेहनत की और अपने अधिकारियों से इसके लिए मैंने बहुत सुना भी, डांट भी खाई, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो डांट भी खाएंगे। तो इस तरह से काफी मेहनत करके वो पल आज भी याद आते हैं जब बड़े बड़े कलाकारों के लिए हमने खड़े होकर मंच से बोला।
1: तो जी हाँ, आपका आज का कार्यक्रम है सखी सहेली, मैं लोग अक्सर सुना हाँ रेडियो पर, तो जी हम महिलाओं ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करा, चाहे आज री युवा पीढ़ी के दो या जिसका काम कर रहा है या रेडियो में आने की जिसकी इच्छा रखे और काम करना चाह रहे, तो वहाँ सब कंपेयरा ने कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है?
0: सबसे बड़ी बात यह है आराधना कि चाहे आप विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम सुने या आपके अपने केंद्रों से प्रसारित होने वाले महिला जगत कार्यक्रम है, या जैसे अभी आप ये महिला का ही कार्यक्रम पेश कर रही हैं, महिलाओं के कार्यक्रम के लिए आप काम कर रही हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको रेडियो से जुड़ना है तो उसे सुनना सीखना होगा। सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बने आप, और अगर आप इसमें अपनी आवाज के माध्यम से आना चाहते हैं, जैसे सखी सहेली के लिए आपने कहा, तो सखी सहेली विविध भारती का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे सखियों के साथ साथ हमारे सखा भी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, जब हम हेलो फरमाइश कार्यक्रम करते हैं या हेलो सहेली कार्यक्रम करते हैं, तो हेलो फरमाइश के हमारे सखा लोग भी हमसे कहते हैं, या फेसबुक पेज पर जो हमारे श्रोता जुड़े हैं वो कहते हैं कि उन्हें सखी सहेली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और आप मानेंगी नहीं आराधना, जब बहुत सारे श्रोता का हम किसी विविध भारती की प्रोग्राम में कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ जब श्रोता हमें मिलते हैं तो वो बताते हैं कि वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे साथी श्रोता साथी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि सखियों के कार्यक्रम को सखा भी सुनते हैं। और यकीनन सुनते ही होंगे, क्योंकि जब आप गृहस्थी के दो पहिए एक स्त्री और पुरुष है, तो कार्यक्रम में भी जब उसे सखा सुनेंगे, सखियां सुनेंगी, तभी वो कार्यक्रम संपूर्ण बनता है। तो बात ये नहीं है कि आप रेडियो में आकर काम कर रहे हैं, आप श्रोता के जरिए भी जुड़ सकते हैं, श्रोता बनकर भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने उनको सुधारें, अपने विचारों को अच्छा बना सकते हैं। तो रेडियो तो एक ऐसी बड़ी दुनिया है जो, जहाँ पर कहते हैं कि सुंदर चेहरे नहीं चाहिए, सुंदर और संवेदनशील आवाजें और मन चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी आराधना कि यहाँ पर वो लोग ज्यादा चलते हैं जो, जैसे मन्ना डे का एक गाना है कि सुर ना सजे सजे क्या गाऊं मैं, मतलब इस तरह के गानों को समझने का मर्म एक उद्घोषक को आना चाहिए, एक लिस्नर को आना चाहिए, तब जाकर आप एक सफल उद्घोषक बन सकते हैं या एक श्रोता बन सकते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ
1: जी। अमर जी आप बोले कि एक सवेदन

0: शील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्यक्रम में जब प्रस्तुति देवा तो विभिन्न समय खासकर महिलाओं बात अगर करा कि कोई महिला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है तो विने कौन कौन सी बारीक चीजें और ध्यान रखना चाहिए।
1: आपके भीतर एक संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अगर आप महिला हैं, महिला के कार्यक्रम कर रही हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि ये जो रेडियो की दुनिया है, ये सृजनात्मकता मांगती है आपसे, है ना। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपने कार्यक्रमों के जरिए अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि रटे रटाए विषय पर तो आप कितना बोलेंगे। आपके अंदर कल्पनाशीलता होनी बहुत जरूरी है। जितनी कल्पनाशीलता होगी उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे, उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे। आप देखिए ना कि कितना सूचनात्मक कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ से, और कितने मनोरंजन वाले कार्यक्रम होते हैं। तो खाली सूचना नहीं चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। मैं इसको ऐसे मानती हूँ कि इसमें जैसे अमीर खुसरो का कलाम भी होना चाहिए, और कबीर का फकीराना अंदाज भी होना चाहिए, और मीरा का जो है आध्यात्मिक प्रेम भी होना चाहिए, और दिलकश जो है फिल्मी गीत, सदाबहार गीत जिसे हम कहते हैं, आपका अंदाज खूबसूरत होना चाहिए। ये सभी मिलकर एक माहौल पैदा करते हैं रेडियो की दुनिया में, और एक कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बना देते हैं।
0: तो जी हाँ, सखी सहेली और हेलो सहेली कार्यक्रम पूरे देश रे कोने कोने में सुना जावे, और बहुत सारी जी की महिलाएं जी की है वे सखियां आप बन चुकी है, सहेलियां बन चुकी है। तो इन कार्यक्रम में जब आप प्रस्तुत करो तो बहुत सारी संघर्ष मई महिलाएं हैं जी की आपसे जुड़े कि आपने जीवन की कहानियां बताए मेरे विभिन्न समय आपने किया लागे सुन पर।
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हेलो सहेली के माध्यम से हम बहुत सारी सखियों से जुड़ते हैं, और देश के कोने कोने से फोन आते हैं हमारे पास, और इतना अच्छा लगता है आराधना उनसे बात करके, इस कार्यक्रम को करके, कि हमारी सखियाँ कितने मतलब गहराई से कार्यक्रम सुनती हैं, एक एक कार्यक्रम का ब्यौरा देती हैं। वो किसी भी से वो बात करना चाहती हैं, किसी भी हमारी उद्घोषक साथी से, तो वो रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं कि आज मेरा कॉल लग गया है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने समय से कॉल कर रही थी मैंने कि आपसे बात करने के लिए मंदाकिनी जी। तो ये सब सुनने के बाद यकीन हमारी आंखें भी गीली हो जाती हैं उस वक्त, और लेकिन प्रोग्राम देना होता है तो हम लोग उन्हें समझाते हैं कि नहीं, भावुक मत होइए, अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। कई बार वो अपने दुख हमारे साथ साझा करती हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी तकलीफें आई हैं, और किस तरह से वो उनसे निकल रही हैं, या हर दिन उन्हें कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है घर परिवार को चलाने के लिए। ये सारी बातें वो सखियां हमसे करती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके साथ सुख दुख साझा करते हैं, और एक खूबसूरत गहरा प्रोग्राम हम पेश करते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है।
0: एक चीज और पूछना चाहूंगा आपने, कोई भी आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करा तो बिन वास्ते कितो समय है जो को देना जरूरी हुआ करा, तैयारी वास्ते कितो समय देना चाहिए।
1: इसके लिए कोई मापदंड नहीं होता आराधना की हम 1 घंटा चाहिए या आधा घंटा चाहिए या 2 घंटे चाहिए। ये तो आपकी एक यात्रा है, रेडियो की यात्रा है। अब आप इस यात्रा में कितने गहरे घुसे हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितनी चीजों से जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो व्यक्ति कौन है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल आने चाहिए पूछने, आप उसकी पूरे पढ़ के पढ़ाई करके आइए। तो इसके लिए वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। ये अब आपकी कैपेसिटी पर है कि आप उस बात को कितनी देर में तैयार कर लेते हैं।
0: जी
1: लेकिन ये तय है कि हमें हर कार्यक्रम के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है आज भी, है ना। रेडियो में पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट का क्या महत्व है, स्क्रिप्ट का बहुत महत्व है। मैं आज भी स्क्रिप्ट करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, जिस भी विषय को मैं बोलती हूँ, जिस भी विषय पर, उसके लिए मैं नोट तैयार करती हूँ आज भी। और मुझे लगता है जब तक मैं ये काम करूंगी मैं लास्ट दिन तक भी नोट तैयार करती भी ही रहूंगी, क्योंकि हर दिन आप कुछ सीखते हैं और हर दिन आप कुछ नया पेश करते हैं, और आप विषय से भटके नहीं, टू द पॉइंट रहें, क्योंकि रेडियो की दुनिया में आपको टू द पॉइंट रहना भी बहुत जरूरी है। विषय से भटक कर आप कार्यक्रम देंगे तो फिर कार्यक्रम की जो मूल चीज है वो खत्म हो जाती है। समय वही है, जैसे एक संगीतकार समय देता है, वो ये नहीं कहता कि मैं 1 घंटा रोज रियाज करता हूँ, वो 2 घंटे भी करता होगा, उसकी अपनी सामर्थ्य है कि वो 5 घंटे भी करता है। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य है कि आप अपने कार्यक्रम के लिए कितना समय देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना उथला ज्ञान रखकर कार्यक्रम पेश करते हैं, या कितना गहरा ज्ञान रखकर आप कार्यक्रम पेश करते हैं। आप जब जाते हैं वही प्रोग्राम आप रोज पेश करते हैं 1 घंटे का, लेकिन आपको पता है कि अगर आज मैंने ये गाना दिया है और इस गाने के पीछे

0: इतिहास को, इसकी इसकी इसकी संगीत को, इसके संगीतकारों को, इसके गीतकारों के बारे में मुझे सारा ज्ञान होना जरूरी है, तो आप पूरा पढ़ के जाएंगे, है ना? ये ठीक मुझे बता रहे हैं। तो आप अपने कार्यक्रम के लिए कितना वक्त देते हैं? मैं तो बहुत देती हूँ, जहाँ तक मेरी बात है।
1: नहीं बिल्कुल, आपसे बहुत कुछ सीखने अवसर मिल चुके हैं मने, और आज भी आपसे बात करूं तो यह लग रही है कि मैं आज भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूं। तो अंत में एक चीज आपने और कहना चाहवाला कि आकाशवाणी
0: हाँ
1: राज्य का 90 वर्ष है, जिसका आज गौरवशाली पल जिको है आज पूरा हो रही है, तो आप इन अवसर पर कहीं कहना चाहवाला।
0: हाँ बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस इतिहास के हम भी साक्षी हैं, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रही हूँ। आज विविध भारती के जरिए हम न जाने कितने श्रोताओं से, कितने बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर कंसर्ट हो रही हैं, लोक संगीत की संध्याएं हो रही हैं, शास्त्रीय संगीत की संध्याएं हो रही हैं, आप सब भी कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा देश इस बारे में बातचीत कर रहा है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष हो गए हैं। तो सोचिए कि कितना लंबा सफर तय किया है आकाशवाणी ने निर्बाध रूप से। सबसे बड़ी बात यह है आराधना, कि रेडियो को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी किस्से आज भी कहे जाते हैं कि क्या रेडियो खत्म नहीं हो गया, क्या रेडियो कोई सुनता है? आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं कहने वाले, लेकिन मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि रेडियो अपनी यात्रा में कभी अप्रासंगिक हुआ ही नहीं, ना ही वो हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बाहरी जगत से थका मांदा आदमी आता है ना आराधना, उसके मन को शांत करने का सबसे खूबसूरत माध्यम रेडियो है। यहाँ मतलब जीवंत आवाज श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर जाती है, दस्तक देती है, आपके जीवन को आनंदित करती है। आप देखिए कितने लोग, कितने आरजे, कितने उद्घोषक, कितने आकस्मिक उद्घोषक अपनी मधुर आवाजों के जरिए हमारे श्रोताओं को आनंदित करते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: रेडियो आज तो 90 वर्ष किए हैं, कल हो सकता है वो 900 वर्ष भी पूरे कर ले। आप
1: बिल्कुल
0: और हम नहीं होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी
1: हाँ
0: उस जश्न को मना सकती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी इसके साक्षी हैं, और हमारा भी कहीं ना कहीं एक पण जितना कोई रोल है जो हम ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं एक बहुत गहरी बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि सूचना की बात अगर हम करें, शिक्षा की बात अगर हम करें, मनोरंजन की बात अगर हम करें, तो बहुत सारे कार्यक्रम बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। और रेडियो के अस्तित्व में जो है सबसे बड़ी बात यह है आराधना, की बुद्धिजीवियों को, प्रवक्ताओं को, संगीतकारों को, गायकों को, कलाकारों को, कवियों को, लेखकों को जगाया इसी रेडियो ने। इसी रेडियो ने शंखनाद किया कि कला जो है कभी मरेगी नहीं, साहित्य कभी मौन नहीं होगा, और सूचना पर सभी का मूल अधिकार है। और इसी रेडियो ने, जिसके 90 वर्ष हम मना रहे हैं, अपने अपने देश के साहित्य, संगीत, इन सभी कलाओं को समाज में, परिवार में प्रसारित किया और अपना महत्वपूर्ण स्थान हमारे घर कर लिया, हमारे भीतर बसा लिया। तो जो आकाशवाणी की संग्रहित आवाजें थी, आज से तुम 20 साल पहले जाओ, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जाइए जाओ, तो आपको पता चलेगा कि जैसे स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, और निराला को हम ले सकते हैं, पंत साहब को ले सकते हैं, भीष्म साहनी को हम ले सकते हैं, हम नागार्जुन की बात कर सकते हैं, कृष्णा सोबती को हम कह सकते हैं, और तो और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, है ना, और श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, ये जैसी बड़े बड़े सैकड़ों विभूतियां आकाशवाणी की शान रही है। तो
1: बिल्कुल
0: आप सोचिए कि वो रेडियो आज अगर 90 वर्ष की ओर अग्रसर है, तो कि उनकी जो नींव थी वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूत रही होगी कि आज रेडियो इतना लंबा सफर निर्बाध रूप से तय कर रहा है।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं आ ही देसरी सुरीली धड़कन विद भारती सु मंदाकिनी जोशी जी।
1: तो मंदाकिनी जी, आज आप आकाशवाणी जोधपुर से फोन लाइन द्वारा जुड़िया, आप अनमोल समय निकाले और बेहतरीन सुझाव दिया। इनके लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार की ओर से आप रो हृदय दिल से बहुत बहुत आभार है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आराधना, आपने मुझे फिर से याद किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जोधपुर बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यक्रम देता है, विविध भारती के जरिए हम काफी लोगों द्वारा सुने जाते हैं, लेकिन आकाशवाणी जोधपुर के माध्यम से सुने जा रहे हैं, इस बात पर मुझे बेहद खुशी होती है, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी रे 90 वर्षारी सुरारी यात्रा गणगौर कार्यक्रम में। वर्तमान में आकाशवाणी 231 केंद्रों, 303 चैनल और 755 ट्रांसमीटर रे विशाल नेटवर्क रे साथे देश रो सबसे बड़ो प्रसारक है।
1: आकाशवाणी की असल पहचान उन दिग्गज आवाजों सु है जिन्हें दशकों तक करोड़ों भारतीय रे दिला में राज करियो हो।
0: देश रा महत्वपूर्ण पल, महान विभूतियां रा विचार, साहित्य साहित्यकारारी रचनावा और कलाकारारी प्रस्तुतियां सभी तरंगा रे साथ है आप लोगा ताई रेडियो रे माध्यम से पहुंची है।
1: मेलविल डी मेलो री बुलंद आवाज में 1948 में महात्मा गांधी री अंतिम यात्रा रो लगातार 7 घंटा आंखों देखे हाल सुना इतिहास है जिको रचियो।

0: उपलब्धियां और समाज में मेरी महत्वपूर्ण भूमिकाओं सामने लाना और एक सशक्त मंच है। जटे गीत संगीत सागे नई सोच नई आत्मविश्वास जगावे, सागे ही सागे ग्रामीण विकास आजीविका स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी अनेक जानकारियां सहज भाषा में श्रोताओं तक पहुंचा रही है।
1: और जब बात किसान री हुए तो आकाशवाणी खेत खलियाना ताई ज्ञान री रोशनी पहुंचाने रो अद्भुत काम करियो है। मौसम री जानकारी, नई कृषि तकनीका, सफल पशुपालन और सरकारी योजना वाली जानकारी किसाना ताई पहुंचाने में रेडियो हमेशा ही आगे रहो है, चाहे वो चौपाल हुए या कृषि जगत।
0: चुनमुन बचारी बहुत ही प्यारी सी दुनिया री कल्पनाओं सु एक उड़ान भरे, कहानियां कविताएं गीता और रोचक जानकारी रसागे कार्यक्रम मनोरंजन रे साथे बहुत कुछ सिखावे और बहुत कुछ सुंदर चीजें जकी है प्रदान करे।
1: देश री सीमाओं पर तैनात आपरा वीर सैनिका रे वास्ते भी आकाशवाणी हमेशा ही भावनावां रो सेतु बन्यो है। जद सैनिक आपरे घर परिवार सु दूर रहता तब रेडियो वारो परिवार बन्यो और वारो संदेश वारे परिवार ताई पुगायो, चाहे वो जय माला हुए या सीमाड़े री गूंज।
0: हेलो डॉक्टर, स्वास्थ्य री सबसे बड़ो धन है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सक श्रोताओं रे सवाल राज सरल भाषा में समाधान करे, स्वस्थ जीवन शैली रो महत्वपूर्ण सुझाव देवे।
1: युवा रे वास्ते हमेशा ही आकाशवाणी नई नई योजनावां करियर री बाता ले तो आयो है और 18 विशेष कार्यक्रम युववाणी युवा री बात आपा तक हमेशा ही पुगई है।
0: मेहमान रो रविवार रे विशेष पहचान दियो है। विभिन्न क्षेत्रों रो विशिष्ट हस्तियां सु आत्म बातचीत रे माध्यम सु माने जीवन रा अनुभव संघर्ष उपलब्धियां सु प्रेरक विचार मिले और श्रोताओं तक वे विचार है जगह पहुंचे।
1: लोक धुन माटी और भाषा री अपनायत सुभर्योड़ा मनवार और मरुधरारा गीत हो, झुमको चिरमी या लोक संगीत, टेम ने नमस्कार और अंताक्षरी, ऐसे सब कार्यक्रम जोधपुर आकाशवाणी रे माध्यम सु घर घर री पसंद रहा है।

0: अच्छो सुनो, सार्थक सुनो, सटीक सुनो, मीठो सुनो, थोड़े में विस्तार पाणो रेडियो री देन है। आकाशवाणी जोधपुर अनगिनत कार्यक्रम दशकों तक श्रोताओं रे जीवन पर एक अभिन्न हिस्सो है जिको बनो रही है। वो आत्मीय रिश्तो है जिकन आकाशवाणी 90 वर्षरी इन यात्रा में इतो यादगार और जन जन सूर्य मानस पर जगह बनाई है और खूब सारो स्नेह मिलियो है।
1: आकाशवाणी री 90 बरसा री सुरमई यात्रा में अगर कोई सबसे बड़ो साथी रहो है तो वह है महारा श्रोता। हाँ सर, रेडियो री आवाज जब हवाओं में घुले तो केवल तरंगा नहीं हुए, वह लाखों करोड़ा दिला से जुड़ने रो एक नेहरो धागो हुए है, और वो धागो बिना आकाशवाणी और वारे श्रोता वारे बिना अधूरो है।
0: रेडियो ने अब तक न जाने कितना ही सुदूर अंचलों, गांव, नगरा, शहरा और महाशहरा में आपकी धूम मचाई है। रेडियो रे संग जीणो हर दिन उत्सव जिया है। रेडियो री दुनिया में 10 जनवरी 1993 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुयो। फोन इन कार्यक्रम द्वारा आम नागरिक सीधे फोन उठाकर स्टूडियो में बैठा विशेषज्ञ उद्घोषका सो बातचीत करने रो अवसर मिल्यो, जिमें स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा, सरकारी नीतियां और कई तरह का महत्वपूर्ण विषय पर श्रोताओं सीधा सवाल पूछ सकता है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी में खाली श्रोता सुनने रो काम नहीं करियो, पण उनारी बाता ने भी आकाशवाणी महत्व दियो। श्रोता पत्र, फरमाइशी, गीत, सुझाव, प्रश्नोत्तरी और लोक संगीत से जुड़ा संदेश ए सब कार्यक्रम ने जीवंत बना दियो।
0: भारत में आकाशवाणी आज भी 23 भाषाओं और असंख्य बोलियों सु देश री लगभग 99% आबादी तक आपरी पहुंच है जिको राख रही है।

0: पर आकाशवाणी जोधपुर द्वारा रेडियो से जुड़ा कई प्रेरक और यादगार कहानियां और विचार आपके सामने रखा गया।
1: रेडियो दो अनजान लोगों ने दो प्रेमियों ने मिलने रो भी काम करो है, बाने जीवन ने एक नए मोड़ दियो, बन दोनों ने साथ जोड़ियो और बाने दाम्पत्य जीवन रे बाए विशेष प्रेम उसने और एक रिश्ते रे डोर में बांध दियो।
0: रेडियो संग्रहकर्ता दिनेश जी सु बातचीत में वारे अद्भुत संग्रह रे बारे में आपा जानियो, जारे पास 1250 रेडियो है अबार भी सुरक्षित।
1: रेडियो प्रसारण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका ने समझते हुए महिला उद्घोषकों से भी बाणा अनुभव जिका है वे भी सुनिया।
0: आपरे पत्रा रे माध्यम सु रेडियो पर एक अलग पहचान बनाने वाला अनिल बोड़ा सु बातचीत कर वारे रेडियो से जुड़ा अनुभव जानिया।
1: वर्ष 2025 में प्रसारित विशेष गणगौर कार्यक्रम री झलकियां और सांस्कृतिक महत्ता पर की गई आकाशवाणी 90s रे इन श्रृंखला में भी बहुत सारी चीजें जिकी है वही जानी।
0: अपना वरिष्ठ श्रोता श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी आपरे जीवन में रेडियो रे प्रभाव और वासु जुड़िया भावनात्मक स्मरण है जका साझा करिया।
1: आकाशवाणी रे 90 वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषकों से भी विशेष बातचीत कर व्यारा अनुभव यादगार किस्सा और नई पीढ़ी वास्ते प्रेरक सुझाव जी का सुनने।

0: आज जद आकाशवाणी आपरा 90 बरस पूरा कर लिया है तो वे तमाम श्रोतागण कलाकार उद्घोषक लेखकार तकनीकी साथियों ने मैं नमन करा हाँ जिनारी ई विरासत ने वे समृद्ध बनायो है वहां असंख्य आवाजा ने भी जिनारे मंच रे माध्यम सु समाज ने दिशा दी संस्कृति ने संजोयो और जन जन तक संवाद पहुंचायो।
1: रीढ़ ने समय प्रबंधन रे महत्व ने जन जन तक पहुंचाने री सक्रियता है चिक्की दिखाई है। अनुसार रीढ़ ने भाषा री मर्यादा और सम्मान करनो सिखायो है। बंद घड़ी में सही समय रो मिलान प्राय घर रे बुजुर्ग आज भी रेडियो रे बताए गए समय रे अनुरूप ही कराया करे है। आकाशवाणी रे 90 वर्ष केवल समय रो पड़ाव ही नहीं बल्कि असंख्य श्रोताओं री स्मृतियां भावना और विश्वास री अमूल्य धरोहर है। आज रे विशेष कार्यक्रम में आपरे साथे ही आज रे विशेष कार्यक्रम में आपरे सागे ही दो रेडियो संगनिया आराधना जोशी
0: और शीतल राठौड़
1: कंसोल पर साथ दे रिया हा कपिल। ट्रांसमिशन सहयोग रियो सुनील जयपाल प्रेम किशोर सैन।
0: कंट्रोल रूम सु अपने साथे हा फारूख अहमद शेख। प्रस्तुति ही राजेश लामरोडरी और संयोजन हो मनीष सोलंकीरो।
1: आकाशवाणी रे 90 गौरवशाली वर्षा ने समर्पित इन विशेष प्रस्तुति ने अठे ही विराम देवा इन रे सागे ही सख्या लेवा सीख
0: चाला राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:15 हुए। अब दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ में सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और

0: ही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीआई

0: एससी से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह

0: कम है।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की केवाईसी निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि बीएसएनएल ने सिम केवाईसी से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1301।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई।

0: इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
0: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
0: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
0: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी

0: का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया?
1: नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी।
0: तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा, अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले,

0: कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: लेकिन मुझे तो अरे अरे मगर
0: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक है
0: हां अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है
0: चल चल चल चल, चल। हाँ, हाँ, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: हाँ, ठीक है, चल, ठीक है, चल, चल, चल, चल, चल,
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा

0: क्या सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
1: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1301 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं। अब आज की ये पहली सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो जी, वेलकम। आज की इस बेहतरीन मज़ेदार सी शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंडे की ये शाम है, फरमाइशों का पिटारा आज खुलने वाला है, एज वी नो, हम सभी को पता है। और अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश का कोई भी एक गीत और फिल्म का नाम और संग उसके अपना नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं और हम सुनाएंगे आपको आप ही के पसंद के गाने। युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम मंडे की शाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो रागी रोहित। और कहाँ आपको फरमाइश भेजनी है, किधर भेजनी है, वो सब बताएंगे। फिलहाल एक म्यूजिकल ट्रैक हम आपके साथ सुनने वाले हैं, उसके बाद में करेंगे ना आपकी सारी फरमाइशें पूरी।

0: वेलकम बैक जी। इस दमदार से म्यूजिकल ट्रैक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी। और आज दो शानदार सी आवाज़ें, शानदार इसलिए बोल रहे हो भैया, खुद की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दो शानदार सी आवाज़ आपके साथ है। मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज की शाम आप जो है वो अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 9413239359 पर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413239359 पर।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ आप हमें हमेशा की तरह मेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। हमारा मेल एड्रेस है yuvapasandjodhpur@gmail.com। एक बार फिर से बताई दे रहे हैं yuvapasandjodhpur@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं यहाँ पर हमारे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं और क्या फरमाइश आपकी, फटाफट से बताइए। फिलहाल आप और हम मिलकर एंजॉय करने वाले ये वाला म्यूजिकल ट्रैक। मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से इस प्यारे से सुंदर से मजेदार से सूदी से सॉन्ग के बाद प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप ऑनली ऑन 102.1 एफएम पर, और युवाणी चल रहा है। इस आवाज़ का नाम राहुल है, आज मेरे साथ हैं
1: बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ रोहित।
0: और फरमाइशों का पिटारा साहब खुल चुका है हमारे सामने, और आज की पहली फरमाइश कहाँ से आई ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानना चाहेंगे आप, और हम भी आपको बताएंगे। सदर बाजार कुरावली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, अरे वाह क्या बात है, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की तरफ से।
1: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ खांडा फलसा जोधपुर से राहुल आयशा ने फरमाइश करी। इन्हीं के साथ साथ फहीमा अफसाना बिस्माहा सायरा साबिर साहब मोहम्मद अरसलान और अब्दुल अहद ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की है।
0: साथ ही साथ गांव खारियां ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश हुई है हमारे पास। सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र बिजारनिया, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया की तरफ से।
1: बिल्कुल, और साथ साथ में पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की
0: साथ
1: है।
0: ही साथ भोपाल के राजस्थान से भी फरमाइश आई है इस गीत के लिए, जो कि हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार की तरफ से।
1: तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये वाला म्यूजिकल ट्रैक, और इसके बाद में अगर आप भी हमें फरमाइश करना चाहते हैं तो बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम और आप एंजॉय करते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और बीइंग अ जोधपुरी, बीइंग अ राजस्थानी, तुम हो तो हम सिर्फ एक जन को ही डेडिकेट कर रहे हैं, और वो है अभी सूर्य देवता। और दिन जब होता है ना तो इतनी तेज धूप गिरती है, और सबको यही लगता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सूर्य भगवान आप ही कर रहे हैं। थोड़ी सी राहत दो, लेकिन राहत राहुल एक और चीज़ से मैंने अभी सुना है, क्योंकि इंडियंस है तो जब भी इंडिया जीतता है ना तो ऐसा लगता है कि भैया सही में गर्मी से राहत मिली। और हाल ही में ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ हुई, मतलब रिकॉर्ड वाली जो जीत होती है ना भारत ने अभी टेस्ट क्रिकेट मैच में की है, तो क्या है डिटेल्स थोड़ी सी है हमें और हमारे पूरे लिसनर्स को बताइए।
1: कहते हैं बायलॉज नियमों के अनुसार जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिनों का होता है, लेकिन
0: जी
1: इस बार अफगानिस्तान के सामने इंडिया ने खेलते हुए कहा कि भैया हमें ज़्यादा नहीं खेलना, गर्मी बहुत तेज़ है, हम 3 दिनों में मैच को समाप्त करने वाले, और उन्होंने कर भी दिया है। बिल्कुल
0: हाँ
1: जी हाँ, पहले पारी में इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 564 रन बनाए 8 डाउन पर। शुभमन गिल ने बोला भैया आ जाओ यार, बहुत हो गया इनसे, ये नहीं बनने वाले हैं, नहीं होगा इनसे। फिर बैटिंग आई अफगानिस्तान की, तो पहले 152 पर ऑल आउट कर दिया, फॉल ऑन खेलना पड़ा, फॉल ऑन खेल के फिर 112 से आउट कर दिया। पूरी पूरी एक इनिंग और 300 रनों से भारत ने ये मुकाबला जीता है, और इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में भारत की इंटरनेशनल सबसे बड़ी जीत है। और इस मैच में सबसे बड़ी बात ये रही कि भैया जो डेब्यू किया मानव सुथार, लेग ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो खेले, उन्होंने अपनी पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम कर लिए। मतलब ऐसा डेब्यू मैच किसके लिए सही
0: बिल्कुल
1: होगा, बहुत मतलब कमाल का इनके लिए टेस्ट मैच बीता है। और अगली पारी में जब फिर गेंदबाजी आई उस दौरान फिर इन्होंने विकेट चटकाए, और इस बीच स्पिनरों का जो दबदबा इस पूरे टेस्ट मैच में देखने को मिला, और भैया जो कमाल की बल्लेबाजी और उससे भी ज़्यादा धुआंधार गेंदबाजी इस टेस्ट मैच में हमें देखने को मिली। 6 जून को शुरुआत है, 8 जून को इन्होंने ख़त्म भी कर दिया। मतलब क्या लेवल
0: कमाल,
1: की मतलब क्रिकेट खेला है इंडिया की टीम ने इस बार, बहुत कमाल, बहुत लाजवाब।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ क्योंकि आज मंडे और फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है राहुल, इसी के साथ हमारी जो अगली फरमाइश है वो भी आ गई। और जिन्होंने फरमाइश की है ना उन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी, तो आपको भी मेरी तरफ से और पूरी एयर की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो फरमाइश है वो करी है अब्दुल हमीद छीपा, रईसा बानो छीपा, अब्दुल मुसफिर छीपा, अब्दुल अहद छीपा, आयशा बानो छीपा, फिज़ा बानो छीपा ने की है, और ये खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर राजस्थान से है।
1: जी हाँ बिल्कुल।

0: आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, इसके लिए इन्होंने बधाइयाँ भेजी है, तो बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए। और अगली फरमाइश की मैं बात करूँ तो अगली फरमाइश आई है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदन आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले।
1: बिल्कुल। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत के लिए फरमाइश की
0: साथ
1: है।
0: ही साथ कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से भी फरमाइश आई है, सब बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मतानशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से फरमाइश आई है।
1: बिल्कुल। और अगर इसी के साथ आप भी हमें फरमाइश भेजना चाहते हैं तो हमारा मेल एड्रेस है yuvapasandjodhpur@gmail.com।
0: और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413239359। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413239359 पर।

0: वेलकम
1: बिल्कुल
0: बैक है जी
1: जी,
0: आपका एक बार फिर से प्रोग्राम ह्यूमर को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। यह पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त और फरमाइशों का सिलसिला जारी है। पिटारा खुल चुका है एक बार फिर से और अगली फरमाइश जो आई है वो आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता और गीता की तरफ से।
1: बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ जोधपुर से श्री शंकर लाल गोयल, शर्मिला गोयल, खुशबू गोयल, सपना गोयल और गौरव गोयल ने इस गीत की फरमाइश की है।
0: बागपत उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास फरमाइश आई है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि भैया आकाशवाणी के 90 साल प्रवेश में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और गांव खारिया पतावतान बीकानेर से मनोज कुमार तंवर, पुखराज तंवर, सचिन तंवर, लायुष तंवर और इनकी पूरी फैमिली ने, इनकी तरफ से ना पूरी तंवर फैमिली
0: क्या
1: ने जो
0: बात है,
1: है
0: क्या
1: इस
0: बात
1: गीत
0: है। साथ
1: की।
0: ही साथ जो अगली फरमाइश भी आई है वो आई है पद्मा टॉकीज नीपा नगर मध्य प्रदेश से है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की तरफ से।
1: बिल्कुल। और गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दोदी, पुष्पेंद्र कुमार दोदी और प्रमोद कुमार दोदी ने भी इसी गीत की फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवानी, और आज आपके साथ दो आवाज़ें हैं जिसका नाम है रोहित और
1: आज आपके साथ इस आवाज का नाम राहुल।
0: बिल्कुल जी। और फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है आप सभी को पता ही, और इसी सिलसिले में ना और फरमाइशें जो हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, और अगली जो फरमाइश है वो सीधा आई है भोपालगढ़ से, जो कि करी है राजेश, किशन, दिव्या राय, बिट्टू सा और पूरे पुरोहित फैमिली ने।
1: हमारे अगले फरमाइश करता जो सबसे पहले लिख रहे हैं, सर प्रेम नमस्कार, जो बिल्कुल आपको भी बहुत सारा नमस्कार, और पसंद करता है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, जो कि हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा साहब।
0: बिल्कुल, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा ने भी इसी गीत की फरमाइश की
1: साथ ही
0: है।
1: साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश आई है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप की तरफ से।
0: बिल्कुल, और हनुमानगढ़ टाउन से रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने भी इसी गीत की फरमाइश की है।
1: गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की तरफ से ये फरमाइश आई है, और आप और हम मिलकर एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा म्यूजिकल गीत।

0: बिल्कुल जी, आप सभी का स्वागत है। और फरमाइशों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, और इसी बीच में जो है
1: अगली
0: प्रसार भारती
1: फरमाइश
0: रोड
1: भी
0: मोती नगर, बिल्कुल बिल्कुल, और मोती नगर न्यू दिल्ली एरिया से जो फरमाइश आई है, जो कि करी है अनिल मानसी, गौरव, कविता और पूरी अरोड़ा फैमिली मेंबर्स ने।
1: और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने इस गाने के लिए फरमाइश करी है साहब।
0: बिल्कुल। और बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर, आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाफ अहमद, अमाना आसमा, आशु जूही, सदफ और पूरे बागवान फैमिली ने इस गीत के लिए
1: साथ ही
0: फरमाइश की
1: साथ
0: है।
1: अगली फरमाइश जो करता है वो है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी बोट और इनके पूरे परिवार वाले। चलिए जी आए फिर इनकी पसंद का आप और हम मिलकर ये बेहतरीन सा मज़ेदार सा म्यूजिकल गीत ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: और हमें आपके फरमाइशों की देर थी, वो भी अब मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अगली फरमाइशकर्ता जो उन्होंने हमें अपनी फरमाइश भेज दी है
1: जी
0: जीमेल के ज़रिए, जो कि है चमन पार्क दिल्ली से, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने
0: साथ ही
1: इस
0: साथ विरमगांव से अजीता पॉल, हेमा पॉल, शोभापुर जिला मेरठ से उमेश गौड़ ने भी फरमाइश करी इस गाने के लिए।
1: बिल्कुल, और जोधपुर से ही निहाल सिंह और राजीव शुक्ला ने इस गीत के लिए फरमाइश की
0: साथ ही
1: है।
0: साथ इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम की तरफ से, बदलापुर मुंबई से विनोद बंडलरकर भी जो है वो इस गाने के लिए उन्होंने फरमाइश करी साथ।
1: बिल्कुल, तो चलिए इन सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और इनकी पसंद का ये वाला म्यूजिकल ट्रैक हम और आप मिलकर सुनते हैं।
2: तन मन सुलगा।

0: हो रही है। वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम यूमॉर्निंग को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप, और आज युवा पसंद फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है। मैं कह जी यार, हमारे इधर ना सरकारी नौकरी की एक परीक्षा पास करना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। कोई भी एक पेपर पास हो जाता है तो हमें लगता है कि भाई साहब बहुत बड़ा हमने गढ़ जीत लिया है और बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, लेकिन कुछ नहीं भाई साहब, एक परीक्षा पास कर ली, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, क्योंकि तीर तो इन्होंने मारा है। 23 साल की उम्र है मात्र, नाम है चारू पांडे, और इन्होंने 23 साल की उम्र में 19 सरकारी परीक्षाएं पास करी है। 19 सरकारी परीक्षाएं मतलब अपने आप में मायने रखता है। साहब कहाँ की है, क्या बात है, इनके बारे में पूरी बात करते हैं। तिलदा छत्तीसगढ़ से हैं चारू पांडे, 23 साल की उम्र में 19 परीक्षाएं पास कर ली सरकारी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित भी करेंगी।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: इन्होंने इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट कौन कौन से एग्जाम पास किए उसके बारे में बता देता हूँ आपको। SSC CGL जो कि अच्छा खासा लेवल का पेपर माना जाता है, ये इन्होंने पास करा है। IBPS बैंक के पेपर भी इन्होंने पास करें, पुलिस भर्ती परीक्षाएं भी इन्होंने पास करी। इसके साथ साथ वह जो अभी हैं CAG के चेन्नई स्थित ऑफिस में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पर फिलहाल कार्यरत हैं। और 23 साल की उम्र में 19 सरकारी परीक्षाएं पास करना, रोहित भाई मतलब अमेजिंग काम है ये तो
1: बिल्कुल भैया,
0: यार।
1: देखिए सरकारी नौकरी वैसे ही वो वाली चीज़ है ना, मिठाई पे बरक लगी हुई जो होती है ना, जो अपन ने पहले कभी बात की थी, तो वैसे होती है। और कई बार ना जो लोग नॉर्मल सी अगर हम देखें तो थोड़ी सी भी गवर्नमेंट एग्जाम पास हो जाता है तो चाल बदल जाती है लोगों
0: चाल
1: की,
0: बदल
1: बिल्कुल
0: जाती
1: है ना,
0: लोगों की।
1: एकदम ऐसा लगता है कि यह हमने गढ़ जीत लिया, चौड़
0: हाँ
1: हमारी, राज हमारा चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चारू जी की बात करें तो 19 इन्होंने एग्जाम जो है पास कर लिए, और बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी उपलब्धि लेने के बाद भी सरलता से इन्होंने इंटरव्यू दिया था। मैंने इनका इंटरव्यू भी देखा था तो काफ़ी शालीन ही नज़र आ रहे थे उसमें। लेकिन ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने 19 किए हम लोग एक ही करेंगे, क्योंकि हमारा गोल एक ही गवर्नमेंट एग्जाम पास करने का, और बहुत सारी अभी वैकेंसीज आ रखी हैं, हम आपको समय समय पर वो भी अपडेट देते रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, कभी भी प्रेशर में नहीं आना है कि भैया उन्होंने 19 पास कर लिया, हमसे एक भी नहीं रही, भैया आज नहीं तो कल कोई भी परीक्षा कैसी भी हो अगर मेहनत से करेंगे तो पास हो जाएगी। और वैसे ही मेहनत से जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमें मेल और मैसेजेस भेज रहे हैं, तो राहुल जी फटाफट से बता दीजिए कि अगला जो मेल, अगली जो फरमाइश है वो कहाँ से आई है।
0: बिल्कुल, अगली फरमाइश आई है बिहार स्टेट डूमराव से मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम वली और असमा वली की तरफ से। साथ ही साथ सहारनपुर से सोनाली डोमीन और प्रतीक डोम, राजकोट से अजीता पॉल और प्रमिला पॉल की भी फरमाइश आई है इस गाने के
1: बिल्कुल,
0: लिए।
1: इन्हीं के साथ साथ केदेश्वर कृषि फार्म मीठा से नाग सिंह राजपुरोहित की तरफ से प्यार भरा नमस्कार आया, और इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है।
0: साथ ही साथ बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से पटना बिहार से ये हैं वसीम अकरम, सालुआ खातून और गुड़िया खातून, बदलापुर मुंबई से साथ साथ विनोद बंडलकर भी हैं फरमाइशकर्ता के नाम
1: बिल्कुल,
0: में।
1: गांव चैनपुरा तहसील से धोरी मन्ना, जिला बालोतरा राजस्थान से जगदीश भारती गोस्वामी जी, इनके साथ साथ विजय भारती गोस्वामी, नरेश भारती गोस्वामी और मलिता गोस्वामी ने इस गीत की फरमाइश की है।
0: अगले फरमाइशकर्ता लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी, आदाब नमस्कार, बिल्कुल आपको भी बहुत
1: नमस्कार।
0: बहुत नमस्कार, कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और ये फरमाइशकर्ता हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू।
1: बिल्कुल, इतनी सारी फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, और चलिए इन सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: फिलहाल आपने एंजॉय किया अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ में म्यूजिकल ट्रैक। और प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, युवा पसंद फरमाइशों कार्यक्रम। मंडे की शाम पिटारा खुल चुका है फरमाइशों का, और इस आवाज़ का नाम आज आपके साथ राहुल और मेरे साथ है।
1: बिल्कुल, आपके साथ मैं हूँ रोहित। और राहुल, ना बहुत ज़रूरी हो गया आधार कार्ड आजकल हमारे आम जीवन में। कहीं पर भी जाते हैं ना तो आधार कार्ड के बिना जो है काम नहीं होता। लेकिन कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि कई बार हम आधार कार्ड या तो घर पर भूल जाते हैं, या फिर हमारा आधार कार्ड जो है गुम हो जाता है, या फिर किसी कारणवश कहीं ना कहीं मिसप्लेस ऐसी जगह रख करके हम भूल जाते हैं कि इमरजेंसी के वक्त हमें मिलता ही नहीं है। तो ऐसी अगर सिचुएशन आती तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने सोल्यूशंस निकाले हुए हैं। हम कहीं पर भी बैठ करके ईजिली अपने आधार कार्ड को रिकवर कर सकते हैं।
0: कैसे कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए दो इसके सिंपल से ऑप्शंस हैं। एक तो आप वेबसाइट से कर सकते हैं, और एक आप अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस सेंड करके भी कर सकते हैं।
0: और एक आप अपने मोबाइल में अपने आधार कार्ड की फोटो खींच कर भी रख सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं। जैन, अगर आपने फोटो भी नहीं खींची है तो इसका एक और उपाय बता देता हूँ। वेबसाइट है इनकी एक ऑफिशियल, UIDAI.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार सेक्शन में इसकी जो है वो रिट्रीव आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको आधार कार्ड में दर्ज आपका नाम, मोबाइल नंबर और फिर जो नीचे दिया कैप्चा आपको उसमें डालना होगा। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आपको OTP भेजा जाएगा उनके द्वारा, रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा। और इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP जब जाता है, OTP आपको उस जगह पर वापस फिल करना है और आपके सामने आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। और अपने आधार कार्ड को आप उसी वक्त इंस्टेंट अपने फ़ोन में या जिस BPC में आपने वो सिस्टम एक्सेस किया है उसमें आप पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि

0: टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं और वेबसाइट पर वो नहीं जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेज सकते हैं, जो कि नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 51969। एक बार फिर से बता देता हूँ, 51969। इस पर SMS भेजना है और UID अपने 14 अंकों का नाम और पिन कोड के साथ आपको वहाँ पर भेजना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपका नाम राम कुमार है तो आपको SMS पे लिखना है SMS UID राम कुमार, और उसके बाद में आपका जो भी पिन कोड है ना, जैसे कि 342001, जो भी पिन कोड आपका है उस नाम के पीछे आपको अपना पिन कोड लिखना है। कुछ सेकंड में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा और आधार नंबर होगा तो उसमें भी आ जाएगा, और नाम वही डालना जो कि आपका उस आधार कार्ड पे है, और पिन कोड भी वही डालना जो कि उस आधार कार्ड पर है।
1: हाँ, मतलब डिटेल आप सही डालें, आप अगर उसमें अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो पहली चीज़ हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि डिटेल आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है राहुल कि घर में बहुत सारे मोबाइल नंबर होने से हमें पता नहीं चलता कि कौन से आधार कार्ड में बनते वक्त ना हमने कौन से नंबर फीड करवाए थे। तो उसकी भी एक सिंपल सी चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जहाँ पर होता है या ई मित्र जहाँ पर होता है वहाँ पर जाइए, अपने बायोमेट्रिक्स वहाँ पर दीजिए, और उस बायोमेट्रिक्स से आपका आधार नंबर भी आपको मिल जाएगा और कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड है वो भी मिल जाएगा। अगर और भी ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए तो आप 1947 पर, इस पर आप कॉल करके इनसे गाइडलाइंस भी ले सकते हैं।
1: एक और सोल्यूशन भी, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला है तो घर के सारे फोन एक जगह रख लो, जिसमें मैसेज आएगा वो फिल कर
0: बिल्कुल
1: देना।
0: बिल्कुल, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, करना यही है। बल्ले देखिए, अभी फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है और बहुत सारी फरमाइश हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, तो चलिए उनमें से भी फरमाइशों को भी पूरा करते हैं।
1: अगली फरमाइश है मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई की तरफ से।
0: बिल्कुल, इनके साथ साथ राजीव शुक्ला एंड निहाल सिंह यादव ने भी स्वीकार कर जोधपुर से इस गीत की फरमाइश की है।
1: और अगले फरमाइशकर्ता जो हैं वो हमें फरमाइश क्लिक कर भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि नमस्कार जी, बिल्कुल आपको नमस्कार, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से हैं ये कविता गौड़। आइए आप और मिलकर इनकी फरमाइश का ये एक बेहतरीन सा गीत जो है एंजॉय करते हैं।

0: बिल्कुल जी, इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, और आज था मंडे। आज मंडे के दिन बहुत सारी फरमाइशें हमने पूरी की राहुल, बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास आई, बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी के साथ मिलकर हमने सुना।
1: आज के हमारे कार्यक्रम का संयोजन रहा मनीष कुमार सोलिंग की प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, इस आवाज का नाम राहुल। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम नई बात और एक नए जोश के साथ। आज मेरे साथ थे
0: बिल्कुल, मैं था आपके साथ रोहित, और दीजिए हम दोनों को इजाजत।
1: मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम। नमस्कार,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानस सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर।

कार्यक्रम विवरण में हम जानेंगे हमारी आज की और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आइए जानते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

आज रात 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्ष के उपलक्ष में आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप का प्रसारण आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। आज शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

कल दोपहर 1:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। और दोपहर 1:15 पर महिला श्रोताएं सुन सकती है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। कल दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। कल शाम 5 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, प्रस्तुत है देशगान।

अभी आपने सुना समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिमबंगालराज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सीबीएसई बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता सन्दर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारतदलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव त्रिशताधिकैः धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणम्, स्वच्छ भारत अभियानम्, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम्, अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्याम राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन

0: डाकपत्रं च प्रसारयिष्यति। विश्व महासागर दिवसस्य अवसरे पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जनान महासागर संरक्षणस्य समुद्री जीवरक्षणस्य च संकल्पं कर्तुं आहूतवान्। सः अवदत् यत् महासागराः विश्वस्य राष्ट्राणि परम्पराश्च परस्परं संयोजयन्ति। भावि परम्पराणां कृते स्वच्छ जलस्य स्वस्थ पर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम्। क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः। क्रिकेट क्रीडायां भारतदलं अफगानिस्तान दलं एकया एव पर्यायया 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार क्रमशः रिले किए जाएंगे।
2: से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा

0: होगी।
1: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ सतीश पूनिया और डॉ अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण यह है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले यह 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उपसचिव आलोक जैन ने आज इस

0: बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब दो दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गई। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन

0: समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपलखूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगांव के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिलेभर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबुझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ना गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो थयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावां रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानव जीवन तय करनो है। श्री मोदी कहो कि गरीब तबकारी जनतारी जिंदगी

0: زندگی بہتر بناون مائیں پرودیوگی کی خاص کام کی نو ہے.
1: پچھلے 11 سال میں دیش میں 25 کروڑ لوگوں نے غریبی کو ہرایا ہے, غریبی کو پراست کیا ہے, اور غریبی سے باہر نکل کر کے 25 کروڑ کا ایک بہت بڑا سموہ نیو مڈل کلاس کے روپ میں آج دیش کے اندر بہت بڑی بھومیکا ادا کر رہا ہے. اس نیو مڈل کلاس کی اپنی ایسپریشنز ہیں, اپنے سپنے ہیں.
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनतारा भलारी योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है. वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा है. श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो जा रियो है. ध्यान जोग है कि राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलों रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है. जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करन वाला जवाना ने ई कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है. जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है. ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशा रा कृषि मंत्रियों री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू फैला. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी. वे कहो कि 13 जून ताई फेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला. श्री चौहान कहो कि मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला.
2: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो. कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके.
0: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ 72 मकान बनाई चिया है. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी. वे बतायो के आम मकाना माए नल पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है. वे इनने गरीब परिवारा सारू मोटा बदलाव बतायो. केंद्रीय मंत्री कहो कि लाडला 12 साल माए देश माए सगला रो विकास और तेजी उम्फियो है. विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली माए मीटिंग भी. इनमाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुटरी सुप्रिया सुले शामिल फिया. जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर माए गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी. नंदपुरी अंडरपास हूं रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया. ई अभियान रा तहत 125 गैर कानूनी तौर हूं करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया. ई दौरान एहतियातन 3000 पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदका कई हलका माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी. जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माए इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है. ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो. राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करन री मियाद आज पूरी फेगी. राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना. भारतीय जनता पार्टी री ओरू डॉ सतीश पूनिया और डॉ अलका गुर्जर आज नाम पाना, रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना. ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा. खबर नवी

0: સાગે બાતચીત કરતા થકાં શ્રી પૂનિયા વા માથે ભરોસો કરણ સારું ભાજપારા કેન્દ્રીય નેતૃત્વરો આભાર જતાયો.
1: લોકતંત્ર કે ઉચ્ચ સદન મે જાને કા અવસર મિલેગા જીતની ભી બાર પાર્ટી ને મુજે જો ભી જિમ્મેવારી દી પાર્ટી ને મુજે ભરોસા દે કે યુવા મોરચે કે મહામંત્રી ઓર અધ્યક્ષ કે નાતે ઉસ કાલખંડ મે જો અવસર દિયા વો પાર્ટી ને દિયા જિસસે મુજે પ્રતિષ્ઠા મિલી નામ મિલા ઓર ઉસકે બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી કે મહામંત્રી ઓર અધ્યક્ષ કે નાતે એક બાર વિધાયક કે નાતે પાર્ટી ને મુજે ભરપૂર અવસર દિયા.
0: कांग्रेस पार्टी री ओरू नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है. नाम 11 जून ताई पाछा लिया जा सके है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ई साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण अर कॉपियां ओजू जंचावण सारू अर्जी देवण री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालती रहवण रो दावो कीनो है. बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 बत्ता विद्यार्थी 3,08,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी. CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माय कॉपी री फोटो कॉपी लेवण री अर्जी नी देवनु हो. बोर्ड रा मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवन वालाई अगला दौर सारू पात्र वह है. राज्य री सरकारी स्कूला माय गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला. शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी ची ही जो व्यवधार 43 दिन री कर दी री ची है. हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला. आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या. साल 1936 में आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो. पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट.
2: साल 1956 में इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो. आज देशभर में आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलिया माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है. इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है. आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा अर बोलिया माए समाचार अर समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है.
0: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही. इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो. जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है. दूजी कानी अजमेर कना पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई. लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो. मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है. इन दौरान उगनी और उत्तराध उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है. रजरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है. 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है. इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है. युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माए भागीदारी करण री अरज कीनी है.
3: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है.
0: आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ली राव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो. देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया. प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो. 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना. और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवारा 90 साल पूरा भिया. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श.

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स सिंधिया 7 बजिया सुनो न भूलो आपरो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चिरमी कार्यक्रम सुनना सगला हेतलु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई झालावाड़ सु ओ कागद आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी गांव खोखरा मारवाड़ जिला पाली सु कागद लिखे है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला घराला लवई सु गुलाब दास मानिकपुरी और आना साथी और कागद आयो है गांव गंगाणी सु जगदीश भाट आलम पड़ियार भिया राम किशन चुकी देवी और कौशल्या और ईमेल आयो है गोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी पवनपुरी बीकानेर सु भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाइमा सरोज सत्यनारायण दाइमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और अठेसुई आशीष जतीन और आना सगला घराला और कागद आयो है गांव जेसला सु लिखियो है फूलाराम थोरी शिवलाल थोरी हरचंद राम थोरी मल्लू राम थोरी ओम प्रकाश फौजी दिनेश संतोष अर्जुन राम करीर और रेशमा राम फौजी।

0: जी
1: सादुल शहर सू ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और कागज माने कन आयो है जोधपुर सू, लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची।
0: गांव कंटालिया सू भीखाराम मौर्य, सीता देवी मौर्य, विजय प्रकाश, गोमती, माणक चंद, मंजू देवी, जयेश और मनीष मौर्य। खींवसर नागौर सू कल्याण मल, प्रभु राम, बंशीलाल, हेमाराम, शोभाराम मौर्य और आना सगड़ा साची।
1: गांव मेलाना सू छेलाराम मेघवाल, रविन्द्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी मेघवाल। रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सू। और कागज आयो है रुड़कुली सू, लिखियो है अनिल सिंवर। गाँव जेसला तहसील फलोदी सू राजा राम जंवर और आना साथी। तो आप सवारी पसंद माते सुनो सा आ राजस्थानी रचना।

0: ગીત સંગીત રેણી સફર મે હમ સફર હે આપણે સાથે આપણો સાથી ગુરવિંદર બિશ્નોઈ સાથિયા આપ માને ઈમેલ ભેજ અર આપરા પસંદીદા લોક ગીત સુન સકો હો માણી ઈમેલ અગર આપ લિખણી ચાહો chaupal.jodhpur@gmail.com અંગ્રેજી રે છોટા અક્ષરા મે ચોપાલ યાની chaupal.jodhpur@gmail.com ओ है मानो पतो जिने मुजब आप माने ईमेल भेज सको हो।
1: व्यास कॉलोनी एयरफोर्स हूँ चुन्नी देवी मेघवाल बिंदु मेघवाल कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल और आना घराड़ा आउ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और भूमि मथानिया सु भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार
0: आगलो कागज आयो है गाँव गुड़ा विष्णुयान सु लिखियो है जवरी लाल बेरवाल फगलू राम मांझू छोगा राम बेरवाल भाना राम बेरवाल जेता राम विष्णु अनूप सोहनी ममता सरिता दिव्यांशी दीपू चीकू किट्टू और अणा सगला घरवाला और कागज आयो है गांव फिटकासनी सु लिखियो है गोविंद बाबल भागीरथ बाबल काजोल मालाराम बाबल हरी राम संग्राम राम बाबल अठे सुई हुकमाराम सिंवर विष्णु सिंवर और आना सगला साथी
1: बिरई सु रतना राम उदेणिया मेहराम उदेणिया गुलाब राम और आनो सगलो परिवार बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आना सगला साथी खारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उम्मीदा राम चेतन भोम सिंह और आना सगला साथी
0: चातनाडा सु नरेंद्र भाटी वीणा भाटी प्रीति भाटी अठेसुई माणा अनियमित श्रोता बाबूलाल मरेठा और आना सगला दोस्त चाल कला पंजाब सु अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अम्बा चहल रूपलाल बंगा माने ईमेल भेजियो है
1: और कागज आयो है गाँव तिवरी सु लिखियो है वीरेंद्र टाक बसी नगर सु जितेंद्र टाक अशोक पीयूष भंवरलाल चौधरी नरपत चौधरी और आना सगला साथी
0: गांव चाड़ी चौथी ना सुमू मास्टर राजा राम शेराणी जगदीश शेराणी अरविंद संपत सहीराम शेराणी पिंकू प्रभात विक्रम अशोक और धर्मेंद्र शेराणी तो आप सवारी पसंद माते सुनो सा आ राजस्थानी रचना

श्याम डागर, राजेंदर, गोपाल मरेठा, रमेश सांखला, जीतू बाडुलिया, नंदू भाई, वगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी भदवासिया सु कृष्णा राम सांसी, पप्पू राम सांसी, कंवर राम सांसी और विनोद सांसी। खुड़ेचा बीपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाड़ी, जिज्ञा देवी श्रीमाड़ी, सीमा, खुशी, विशाल, मन्नत, सुनील, किशोर, ओम प्रकाश श्रीमाड़ी और आणो सगड़ो परिवार। गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुबाला, विवेक और आणा सगड़ा साथी। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सु, लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आणा सगड़ा घरवाला। और ईमेल माने कन आयो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु, लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और आणा सगड़ा साथी। बाले रो ओ कागज आयो है जय नारायण सोलंकी, राकेश सांकला, जितेंद्र सोलंकी, लक्ष्मण हरीश, विष्णाराम, गोपीलाल सोलंकी, इंदिरा राम सोलंकी और आणा घराड़। और ईमेल आयो है गांव कुंदनपुरा बाड़मेर सु, जगदीश सुमरा, मोहनलाल, नरेश कुमार, निम्बाराम और आणा सगड़ा घरवाड़ा। गाँव आरंग तहसील शिव बाड़मेर सु बाबू राम जयपाल। तो आप सबारी पसंद माते सुनो सा आ राजस्थानी रचना।

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी अबे कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार।

सौंधी माटी री महक, खेत खलियान री खुशबू, गांव गवार री बातां बातां जकी आपने गांव सु जुड़ियोड़ी है, बातां जकी आपा सु जुड़ियोड़ी है, बातां जकी आपने जीवन सु जुड़ियोड़ी है, आपना टाबरा सु जुड़ियोड़ी है, अर गांव रे विकास सु जुड़ियोड़ी है। सगली बातां एक साथ, अर कार्यक्रम है चौपाल, सिंजिया 7 बजिया, सुनो ना भूलो, आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

0: जिज्ञासा होती कि मैं
1: अरे हूँ कहाँ जो घूर पहला बात करे
0: कहो क्या हो?
1: अरे भाई देखा एक हुड़ अपाड़ रा दिन है
0: हाँ।
1: चंद्र के जान आप रे कह रही हुड़ अपाड़ कर दो कोई बाढ़ कांटो है जो कर दो
0: हाँ तो थड़कन बात है
1: अषाढ़ रो महीनो है भाई किन टाइम भर जाई
0: हाँ।
1: तो एक तो गीतर तो हुनती आई जब मैं देखियो आज कितनी बुद्धि आई है
0: हाँ।
1: ना बात अरदास सही करे है भाई पानी रो बरसात है भाई बिना बुद्धि की बात कर दी
0: अब कर दी
1: ना देख मारी बात हो
0: हाँ।
1: हमें खेत खड़े रही जिको नहीं जे मान लो आप ध्यान नहीं राखियो
0: हाँ।
1: तो कटे बाजरिया मिनका रही खेतों में देखो ला
0: यो
1: हमें हूँ है जो तविया कटाऊ
0: हाँ।
1: मारे विचार हो ट्रैक्टर वाला मत भाई बात कर ली
0: कर ली वे
1: हाँ जो मैं कह भाई उठे है जो मन पे आवे जो दे दीजो
0: ठीक है
1: वो थर तविया काट दो
0: वाजड़
1: तो बहुत थोड़ा घना खातरा ढिगले ही पड़िया है दिन भाई लान नह किया जेको बो खाती है उचेरनो है खेत में नेकनो है जेको पच कही है देखे पच भाई देखो जमी पलटो खाई और खाद नीचो जाए इन पच है जो थोड़ा कोई जेड़ा कोई जिनवरिया है भाई यहाँ पर कोई बारे आ जाए तो कर क्या नहीं ठाणे लाग जाए
0: बात
1: आवड़े में समझे नहीं
0: हमें नवलोबा हुणो
1: हाँ
0: थे तो तेरा को बढ़िया
1: अरे तेरा केरा कौन
0: मारे
1: पहला अरे पानी
0: वाह वाह चढ़ लो हुण लो पहले गीत हुण लो हाँ।

0: वाह भाई ये वाह बात आ
1: मैं यू कहूँ
0: वो तो अरदास योगी तो हाँ
1: अब मैं यू कहूँ कि देखो थे तो तेरा को बढ़िया नवलोबा थे मैंने एनी माँ सागर निकाल लो नवलोबा देखो यू मत कर हाँ पाँच मैं डूब जाऊँ कर जाऊँ मैं कहीं थोड़ी बचड़ है घड़ी करूँ पाँच मैं माइंड भूल जाऊँ डूब जाऊँ मरा दा हमारा ठाठा है
0: दुनिया रे भारत देश रे तीन उपाड़े पानी पानी पड़ियो
1: हाँ
0: ठीक है और समंदर भरिया पड़िया है कठे जाओ परा देखे गंबई जाओ परा मट और समंदर है उतू हरू है
1: हाँ
0: देखो थे कन्याकुमारी तक समंदर है
1: आज माने बतायो नवलोबा क्या आज का ही क्या वास्ते बतायो विश्व महासागर दिवस है नी आज जना इन उपलक्ष्य में माने महासागर में काई काई होवे जी की हैं चीजा बताई नवलोबा
0: ओ ठीक ठीक मैंने बता
1: हाँ हुनो नवलोबा
0: कहाँ हुआ मछलियां वे
1: हाँ,
0: क्या
1: बड़े?
0: कोई है जो भर दूजा तीजा दो साल जी हुए तो होता हो और कहाँ हुआ
1: अरे नवलोबा ठान ठानी नीचे है अलग अलग तरह का रंग बिरंगा पौधा नेरा हुआ नवलोबा अलग दुनिया है बा
0: क्यों
1: हाँ बीरमाई ने मछलियान ऑक्टोपस न मगरमच्छ न हैंग भेड़ा हाथ रेवे
0: क्यों
1: हाँ
0: तो जल रहा जीव है भाई
1: तो जड़ा ही तो क्या था ने बा दुनिया मारे दिखा लो थोड़ी यू
0: दिखाओ मैं
1: पचकाई घर
0: तुम्हें
1: बैठा
0: अपा
1: बैठा
0: अपा यूं करा
1: पर यानी नवलोबा हुनो मार मैडम कियो के अबार आपा कहीं थोड़ा अपन लखन थोड़ा खोटा है वो कह वह मिनक जावे नी उठे ही कचरो फेंक कर ना जावे जिको वो समुद्र वास्ते अच्छो नहीं है जो प्लास्टिक फेंक दो आपा बोतल पी परी उठे ही फेंक दी भी पानी रमाई ने
0: हाँ बैठ जाके भाई वो तो कचरो घणो भेड़ो होगो पर
1: हाँ
0: हूँ यूं कहूँ आप हाला द्वारका जी
1: हल हल
0: द्वारका जी हूँ ले जाऊँ थने
1: हाँ
0: उठे है जो को बा गंडूबी है
1: हाँ
0: गंडूबी में बैठ पड़ी कभी
1: मैं कौन बैठी नवलोबा मन निकाल लाओ गंत है
0: हाँ तो उठे कहूँ एक बार द्वारका जी
1: पनडुब्बी
0: पहले
1: में मन पिटा दी जो मन था बाय नहीं नवलोबा समुद्र नीचे तक जाप रहे हैं
0: जावे के
1: हाँ
0: और पचे मुनु काच मु हैंग दिखे
1: हैंग दिखे नवलोबा
0: कोई
1: हैंग दिखे
0: मछलियां कहो है द्वारका जी है जिको कह भाई डूबगा
1: हाँ
0: तो पुरानी सभ्यता ही उठे घर मकान मिंदर दूजा है
1: हैंग दिखे नवलोबा
0: हाँ सब
1: है
0: दिखे
1: भी
0: हाँ
1: जन हलो हलो हलो
0: समुद्र
1: होय
0: में तो उठे हूँ कदी है जो कह थोड़े दिन जम जा भाई थोड़ा 4 रुपया भेड़ा होंगे पचे हूँ लेन जाऊ थाने बता
1: हमकी
0: लिया
1: फसल लावे जन पर नवलो बाब क्या लावे
0: हाँ हमके जमाने होया पचे लाटो ले वाना पर धान चून बेचा
1: ठीक है
0: आज पचे हूँ थारे है जो कह समंदर में हैंग फेर लिया
1: एनी
0: हे भाई
1: थे
0: थारे है कि
1: हाँ
0: तुरी हूँ ठोकी थार की कोई
1: ए थे एनी है पटेड़ा गणा मारो नवलो बा हमें थे एनी है पया बली भेड़ा करबो करो नुकसान हवालो कराऊला थान देख लीजो पचे
0: अरे
1: है एनी मार पटेड़ा रहो चक्कर में एनी मार माता में होगी गाटा तो
0: यू थोड़ी भाई
1: यू का ही कोदी हुए
0: यू गुदी में सेठ हुई है जिसको क्या मेल ताया यू गांठा होती तो बस कही है
1: हाँ वह कहीं
0: अरे
1: कोनी
0: कोई
1: पचे
0: देखे ना भाई मैं कोई
1: एर
0: था
1: माथा मोजा ने बिन कहीं क्या बैठा है था ने ब्रेन ट्यूमर क्या वे बिन है
0: अरे तो हूं क्यों कोई लकड़ी लोटे ठोकी हो
1: तो कहीं हुई हो
0: ये
1: बिन कोई
0: मारे
1: लकड़ी लोटे
0: हाथ
1: हुई
0: में
1: छोड़ी ठोके है
0: मारे हाथ में के करार कौन भाई
1: ओ
0: और
1: है कोनी
0: अरे के कौन ये भाई मार मक्की को उठे बात करे है यूं गड़ घूमड़ो जान बे हो जान
1: है थे करिया मन ठाए मार
0: अरे
1: बात
0: थारे
1: समझे
0: कटी
1: पते
0: पड़े कोई दूजे ठोक गया और क्या हेटी पड़ी गई
1: कटी
0: बात
1: पड़ी
0: करे
1: मार बात

0: वाह भाई वाह,
1: देखियो कितो बढ़िया गीत है नवलो बा।
0: हां घणो ही बढ़िया है भाई, जड़ थे हो जड़ ही हुन जो
1: मैं बढ़िया ही जा नवलो बा
0: मात को हुनन भाई के
1: वाह वाह
0: तेरो का गीत देख भाई देखे मैं की क्या हूं तो मारो हलको लागी
1: है नी
0: खैर जी कौन भाई रेम दे इति फालतू के
1: जमाना रे हाथ हाल लो।
0: अरे मारी भाई ए बात नहीं करनी मान तो हाल तो बताई कौन आज कौन जलमियान कौन बहुत होया।
1: हां तो मैं आज री विगत बार यूं है नवलो बा के आज जन्मदिन है सांसद जाबिर जीरो, ठीक है, और जाबिर मदारी पल्लियल्ली आनो नाम है पूरो, ठीक है। ए नवलोबा आपने भारत रो नाम रोशन करियो है, ए धाकड़ धावक है नवलोबा, एथलीट है ठंडा है,
0: दौड़ लगा है
1: 400 मीटर बाद दौड़े ठंडा है
0: बोरिंग बर्न
1: बोरिंग बर्न क्यों दौड़ी
0: बाद दौड़ तो भाई पहले बोरिंग बोरी पेड़ा पर दड़ा होता
1: है नी।
0: हाँ ठंड कौन सा ठंड को छात है कोई।
1: अरे ठंड टानी है सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बढ़ाई है, व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बढ़ाई है नवलो
0: तो भाई मालिक ने हाजर ताजा रखे।
1: हाँ
0: कहनी के कोटि कोटि बधाई है और ऐसो की दौड़ दौड़ता रहे कहनी देश रे बात तुकमा लावता रहे।
1: हाँ
0: बड़े
1: बड़े नवलो बाबे आज पुण्यतिथि है हबीब तनवीर साहब ए अपने भारत रा रंगकर्मी नाटककार निर्देशक कवि और अभिनेता होया था।
0: ओ
1: बहुमुखी प्रतिभा रा
0: बहु गुणी आए।
1: हाँ
0: नाटकी करता ना पर कहनी के हैं कह कि अगल हुशियर ही बेसब काम करना पर कहनी समाजवाद ते मोटा काम करिया
1: नवलोबा आने भारत सरकार पद्मश्री और पद्म भूषण नवाजियो है।
0: हाँ भाई मोटा तुकमा दो भारत सरकार रहा है बे है जिको दिरीजिया तो आनी है जिको कोई नहीं भूल सके आने अकीदत रा गुल पेश करा कोटि कोटि नमन करा आने मंदरे रा फूल चढ़ा। बड़े
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है मदुरई मणि अय्यर साबरी। अपने 20वीं सदी रे भारत रा हैंगा उमान और प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक होया था नवलोबा।
0: ओ ठीक ठीक ठीक
1: थाड़े बे दक्षिण में नवलोबा
0: हाँ दिखड़ा दे भारत में भाई।
1: हाँ।
0: संगीत तो कटी बाजे का आपरी ठोर रो बाजी है।
1: हाँ।
0: और हैंग बका नहीं आप आपरा बखान है आप आपरी पहचान है।
1: हाँ।
0: और अपने टाइम जो मान लो ढोल बाजे थाली बाजे।
1: हाँ।
0: आर चंग बाजे न क्या है जो को ढोलक बाजे तो आप ही राजी वहाँ
1: क्यों
0: नहीं उठी न कहीं है कि मर्दंगन में कई तरह तरह रहा है जो क्या नहीं बाजा है
1: शहनाइया बाजे न कई अलग अलग तरह तरह रहा है वो नवलोबा
0: आके भारत में तो न्यारा न्यारा है क्या नहीं संगीत रहा रूप स्वरूप है।
1: हाँ।
0: तो भाई आने कोई नहीं भूल सके आने कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा और है जो कह भाई मारे मंदरेरा फूल है जो थे थोड़ा घना कह नहीं
1: थाना हर जस सुनाओ ना मैं हमारी नवलोबा थानो जी सरो हर जस हुई हो
0: हर जस सुनाओ भाई हर जस सुनाओ।

0: ये वाके तुरी भगवान थारो बो भोई भलो करे
1: हेनी
0: हमें
1: हमार दो चार फटड़ा दड़िया जना।
0: अरे तो हूं देखे के भाई देखे लाडी राखू तो री मने आजादी में कम कोई है जो कह नहीं के थारो को नुस्कान करियो केड़ो करी
1: पछे नवलो बा
0: मारो केड़ो करी हूं धन कह घी सुरमिया जी माऊ और जे नहीं करी तो है जो को जूतर पंजार करू
1: नहीं जूते पंजार करो तो मैं थाने हैंग बात नहीं बताऊंगा पहली बताऊँ मैं नाव में कूद की जी की बात मैं थाने खुद बताई आन नहीं तुम्हारे स्कूल वाला बताओ था थाने।
0: अरे तो देखे भाई बात छुपी उड़ी नहीं छुपे
1: हाँ
0: समझे नहीं हाज तो कह नहीं के छोड़े आई पर हूँ कहूँ जो देखे एक दिन के थोड़ा बेगा पानी
1: हाँ
0: आला भाई खेत जिको उठू थोड़ घो कोई कह के कोई बियान यान हिणियान दूजान है तो खई ले लीजिए हाथ में एक बार बाढ़ न का
1: ठीक है
0: आन कोई बउड़िया हुड़िया है तो बानी बाढ़ बरान कोई बाढ़ काटो कर
1: ठीक है
0: और बस बो जंद्र के आला नहीं बस कहो है कि वो खाद बिखेर दे थोड़ो बस है जी को कहो है कि भाई आप तबिया कर ला दे आन कह नहीं क्या भाई भगवान कुदरत है जी को मैं करी तो आप भाई देखे एक बीज लायुड़ा पड़िया है बाजरी रिसो का बीज लियो गवार रा लायो तिल रा लायो थार काकड़िया मतरा लायो आज है जी को कह नहीं कि भाई थोड़ घो कह नहीं कि चारों कूचो तो कुदरत हापी करी और बीज डाल लिया यार बाद ने थोड़ा उपचारित कर पड़ा और पसे है जी मैं हो या पसे कह नहीं अपा पर हड़ा लोटियो करा
1: ठीक है
0: सो को जमानो होई हमें आई है भाई के देखे बातो आस मोटी बार कह नहीं बार महीने रही है हमें कह नहीं के भाई बेलू वाला हरतन तो करना ही पड़ी
1: अबार कर ले की को दियो
0: अरे तैयार हो करा भाई तैयार करो ये रसोड़े में पधारो
1: हाँ
0: बढ़िया भावे जी को जिमनी तैयार करो
1: अबार
0: और हूँ फेर दू माड़ा
1: हाँ।

और माला फेर बैठो जी थे मंठा एक रसोड़ो तैयार कर दे पे बेड़ू कर ले भाई देखे हमें तो तारा ही खासा ऊंचा आएगा अंदाज भी पड़गो है न हमें प्रोग्राम रो टाइम ही किस तूर सिंह पूरो वे है तो भाई सेनो लेवा ही राम राम, राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
3: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
4: थैंक यू।
3: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन PTI के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
5: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया। हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप

0: कल्पना कीजिए, जो ये फिल्म संगीत है क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल बहुत लोकप्रिय है, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी, आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है, इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो

0: काम करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है पर अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
2: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति

भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है।

0: गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए, जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए, आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
2: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
2: और आज वो बापू धाम बन गया है। और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने

0: वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है, चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो। आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की भी बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं जरूर।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे, हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है, मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से

0: वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं, कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं, तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉयस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है।

0: तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है. चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा. उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है. आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है. पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था. हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी. आज सब कितना आसान हो गया है. तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी. इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है.
1: बिल्कुल.
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए, हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं. जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है. तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है. आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है. एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया. उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया. 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है. रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है. तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है. आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है. तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी. ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता. असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है.
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं. जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ.
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ. रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारी को पढ़ाता हूँ. मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में.
1: जी तंजन साहब,
4: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे. लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे।

0: भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है। और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस दें। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है, उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में, स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइच वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंजन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
3: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया

0: कार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत एक कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
1: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं। तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
0: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति?
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है, वो रेडियो
1: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
2: क्वेश्चन, नमस्कार। मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं, उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
7: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और फिर न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई।

इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में

0: सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम आरंभ करते हैं हसी तो फसी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है शफकत अमान।

मोहित चौहान की आवाज में अगला गीत रॉकस्टार फिल्म से। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है AR रहमान का।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में इस कार्यक्रम का आखिरी गीत दिल से फिल्म से, गीत के बोले गुलजार के और संगीत है AR रहमान का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बजने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम खेल जगत, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: खेल जगत।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से बातचीत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान है।
1: नमस्कार साथियों, आज के मेहमान हैं शाहिद हुसैन मंसूरी। आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। शाहिद भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू सर।
1: शाहिद भाई, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि फुटबॉल आपके लिए क्या है।
2: सर, पहले जब खेलता था, जब फुटबॉल पैशन था, जुनून था, और अब फुटबॉल ब्लड में घुल मिल सा गया। मतलब अब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक फुटबॉल के लिए रहेंगे। ऐसा है कि मतलब चित्तौड़ से कोई ऐसा लड़का, ऐसा खिलाड़ी जाए, ताकि चित्तौड़गढ़ का नाम शायद मैं उतना रोशन नहीं कर पाया हूँ, उससे ज्यादा अच्छा रोशन वो कर दे। और मेरी लगातार कोशिश यही है पिछले 8 से 10 सालों से, कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर यहाँ से ऐसे जाए इंडिया टीम के लिए, ताकि जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए।
1: अच्छा शाहिद भाई, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले हैं, कौन कौन से मैच आपके सबसे बढ़िया रहे हैं?
2: सर, स्टार्टिंग नेशनल से बात करें तो मैं अंडर 19 नेशनल खेला था स्कूल से।
1: कौन से साल की बात है ये?
2: 2003 या 2004 की बात होगी सर। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू खेलता रहा, फिर मेरा फर्स्ट संतोष ट्रॉफी आया 2009 में। तो मैंने 2009 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और कोयम्बटूर चेन्नई खेलने गया। फिर मैं 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू 4 साल राजस्थान के लिए खेला, जिसमें मैं 2011 में राजस्थान का उप कप्तान भी रह के राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया मैंने। और इसी के साथ साथ उन्हीं कंटिन्यू 4 सालों में 3 साल में मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी एज ए कैप्टन में 1 साल रहा।
1: मेडल की बात करते हैं तो क्या क्या आपके हिस्से में आए?
2: सर, संतोष ट्रॉफी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडल की बात करते हैं, तो दोनों ही जगह में किसी भी प्रकार का मेडल नहीं आ पाया, क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं लग पाई। अच्छा, थर्ड या फोर्थ पोजीशन लगती है तो भी हमें मेडल मिलता है, पर उस चारों ही साल में बिल्कुल मेडल का चांस नहीं बन पाया।
1: कमियां किस स्तर पर रह गई?
2: कमियां सर इस स्तर पर रही कि उस समय सिखाने के लिए कोच अवेलेबल नहीं रहता था, मोबाइल भी इतना नहीं था। हम सिर्फ हमारे सीनियर प्लेयर को देख के ही फुटबॉल खेलना सीखे, किसी ने बताया नहीं कि बॉल पे कैसे किक करना है, किस तरह बॉल पकड़नी है, किस तरह मारना, किसी ने नहीं बताया।
1: एक फुटबॉल खेल के लिए आवश्यकताएं क्या क्या रहती है?
2: सबसे पहले तो सर बच्चे का इंटरेस्ट, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और अपन उसे सारी सुविधा देंगे तो भी वो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, गॉड गिफ्ट है, रनिंग वगैरह है, तो उसके बाद अपने उसे प्रॉपर ग्राउंड, फुटबॉल का शूज, टी शर्ट, ड्रेस और फुटबॉल का इक्विपमेंट, जिससे अपन उसमें स्किल्स, रनिंग वगैरह ये बना सकते हैं। और एक प्रॉपर कोच जिसने लाइसेंस ले रखा हो या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से लाइसेंस प्राप्त हो, वही उसे कोचिंग दे सकता है, तो ही वो फुटबॉल में निखार पाएगा।
1: शाहिद भाई, खिलाड़ी का चयन किस तरह से होता है? आपने नेशनल खेला है और संतोष ट्रॉफी भी खेली है राज्य के लिए।
2: खिलाड़ी का चयन 3 तरीके से होता है सर। एक तो सर होता है उसकी स्किल्स, कि उसके पास जो दूसरे प्लेयर है उनसे थोड़ा सा एडवांस क्या है, रनिंग है, कटिंग है, शूटिंग वगैरह है ये। एक होता है सर स्टेमिना, जो फुटबॉल में सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब फुटबॉल में आपको 90 मिनट तक भागना ही है, तो देखा जाता है कि आप दूसरों से कितनी स्पीड से तेज भाग रहे हो, कितनों को ओवरटेक कर रहे हो। और तीसरा होता है सर एंड्योरेंस, मतलब आपने फुटबॉल की प्रैक्टिस सुबह से शाम तक 2 घंटे की 4 घंटे की, क्योंकि बॉल आपके पैरों में रहेगी तो ही कोच की आपकी नजर पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं। अगर ये चीज आप में है तो ही आपका सिलेक्शन ऊपर लेवल पे होगा, बाकी नहीं होगा।
1: संतोष ट्रॉफी का अनुभव कैसा रहा? टीम के साथ में किस तरह से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रहती है?
2: सर, संतोष ट्रॉफी में अनुभव ये रहा है कि हमारे पूरे भारत के जितने भी प्लेयर हैं, एक तो सभी से मुलाकात हो जाती है वहां, क्योंकि सारे प्लेयर आते हैं वहां। एक सर राजस्थान टीम की बात करें तो राजस्थान का उस जमाने में भी बहुत अच्छा नाम रहा है। हम साउथ में खेले, वेस्ट में खेले, तो वहां पे भी राजस्थान का बहुत अच्छा नाम रहा। तो एक हम जब जाते हैं वहां तो बोलते हैं कि भाई राजस्थान से, तो एक वो एनर्जेटिक पल आ जाता है। फिर अगर टीम उसी तरह का रिजल्ट कर देती है, कॉम्बिनेशन देती है, अगर टीम में परिवार जैसा माहौल रहता है, तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है। और रही बात कोच की और जो हमारी टीम का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, वो एक परिवार की तरह ही रहा सर। चारों साल कोई मतभेद वगैरह नहीं हुए।
1: ट्रॉफी खेली जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन कुछ मैच हमें याद रह जाते हैं।
2: बिल्कुल सर, मेरे लिए ऐसे ही मैच है 2010 का वेस्ट बंगाल का, मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्स्ट मैच हमारे मणिपुर से था, हम हार गए थे 9-0 से। तो तो जब हम वापस हमारे

0: चेंजिंग रूम में आए थे, तो हमारा नेक्स्ट मैच था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से, तो उस समय उनके कोच थे यूसुफ सिद्दीकी, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं था हमारे प्रति कि हम 9-0 से हार गए, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में बोला था क्या टीम है ये वो वगैरह। तो जेंट के पुलिस में एक इंडिया प्लेयर था रोबिन सिंह करके, और मैं डिफेंड स्टॉपर खेलता था, मेरे कोच ने बोला मुझे कि अगर ये रोबिन सिंह को अगर तू तो कंटिन्यू मार करेगा तो अपन ने स्कोर नहीं खा पाएंगे और अपन गोल मार देंगे, तो मेरे कोच ने सिर्फ मुझे रोबिन सिंह के पीछे लगा दिया। तो मैच के फर्स्ट हाफ में 39 मिनट में एक ऐसे 50-50 बॉल आता है और रोबिन सिंह बॉल लेके आगे बढ़ता है और मैं उस पर चार्ज करता हूँ, तो चार्ज पे उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो रोबिन सिंह अपने कोच को हैंड ऊपर करके बोलता है मुझे चेंज ले लो मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया होता है। ग्राउंड रेफरी जब रेड कार्ड दे देता है तो आप ग्राउंड में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हो, आप चेंजिंग रूम में चले जाते हो। तो मैं चेंजिंग रूम में चला गया था, तो चेंजिंग रूम में और ग्राउंड के बीच में एक पारदर्शिता खिड़की थी, तो वहां से बैठ के मैं पूरा मैच देख रहा था और हम वो मुकाबला 1-0 से जीते, और मेरे कोच ने मुझे बधाई दी कि तेरी वजह से हम ये मुकाबला जीते हैं, अगर रोबिन होता तो शायद ये मुकाबला में हार जाते हो। उसी टीम के कोच ने पूरे राजस्थान टीम को आके चेंजिंग रूम में फुटबॉल के शूज गिफ्ट दिए और पूरी टीम का हौसला अफजाई किया।
1: शाहिद भाई, जिस समय मैच खेलना होता है, तैयारी की जाती है टीम के द्वारा, रणनीति किस तरह से मैच को आगे बढ़ाना है और मैच के दौरान रणनीति बदलनी पड़ती है, किस तरह से ये खिलाड़ी टीम कर पाती है?
0: सर जैसे हमारा मैच होता है 2 बजे, तो हम 10:30-11 बजे पूरी टीम एक रूम में बैठ जाते हैं, जो कोच हमारा होता है वो मैं डेस्क बोर्ड पे अपनी पोजीशन समझाता है 2 घंटे पहले कि हम आज अटैकिंग खेलेंगे, आज हम रुक के खेलेंगे या ओवर लैप खेलेंगे या 1-1 खेलेंगे। जैसे सपोज हमारा मैच पंजाब से है तो हम पंजाब जैसे ही खेल खेलेंगे, क्योंकि पंजाब भी ओवर लैप खेलती हवा में, राजस्थान भी ओवर लैप खेलती, लेकिन अगर हमारा मैच मणिपुर से है तो मणिपुर ओवर लैप नहीं खेलती है, वो छोटा पास गेम खेलती है। तो हमारा कोच यही कहेगा जब अगर वो आपका छोटा पास गेम खेलती है तो आपको उनका पासिंग डिस्टेंस वो तोड़ना है, तो 2 घंटे पहले तो हमारा वो डेस्क बोर्ड पर समझाते हैं। फिर जब हम आधे घंटे पहले चेंजिंग रूम में आते हैं तो चेंजिंग रूम वहां पर हमारा जो कोच होता है अच्छे से जोश भरी स्पीच देके सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है कि आज हमें अपना पूरा दमखम लगाना है, और अगर ग्राउंड में किसी भी तरह का कुछ मतभेद होता है खिलाड़ियों के आपस में तो हमें उसे भूल के वो टीम के लिए खेलना है। फिर भी अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो हाफ टाइम होता है, उनमें उसे 10 मिनट मिलते हैं, तो अगर जो हमारे फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटजी है जो खराब हो जाती है तो वो 10 मिनट में हम वापस सेकंड हाफ के लिए नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसी पे हम फॉलो करते हैं।
1: आप किस पोजीशन पर खेला करते थे?
0: मैं सर मेन स्टॉपर खेला करता था।
1: हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी भूमिका क्या रहती है?
0: इसकी भूमिका ये रहती है सर, जो गोलकीपर से जस्ट आगे का जो प्लेयर खेलता है अपनी टीम के लिए वो स्टॉपर होता है, जिसे डिफेंडर भी कहते हैं। उसका ये काम है कि गोलकीपर के पास और गोल पोस्ट में बॉल नहीं जानी चाहिए, मतलब अगर अपने आखिरी सांस तक कोशिश ये करे कि वो गोल होने से रोके, यही उसकी मेन भूमिका रहती है, और यही गोलकीपर भी उस पर डिपेंड रहता है और आगे वाली टीम भी उसी पर डिपेंड रहती है।
1: टीम को गोल करने से रोकना?
0: हाँ, सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को गोल करने से रोकना, यही मेन स्टॉपर का काम है।
1: अच्छा, कई बार भूमिकाएं बदली जाती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
0: बिल्कुल हुआ सर, ऐसा होता है। हमारे 2012 में लास्ट मैच था असम में गुवाहाटी में मिजोरम के खिलाफ, तो वहां क्या कि हमारे जो प्लेयर थे आगे फॉरवर्ड में वो क्या कि बॉल लेके शूटिंग नहीं कर पा रहे थे गोल पोस्ट पे, तो हम ऑलरेडी हार ही रहे थे 4-5-0 से, तो मेरे कोच ने कहा कि टीम पूरी प्रेशर में आ रही है तो शाहिद को फॉरवर्ड में डाल दो और किसी भी एक प्लेयर को स्टॉपर में डाल दो, गोल तो हो ही गए थे ऑलरेडी। तो ऐसा करके मैंने 3 शॉट अटेम्प्ट किए जिसमें से 2 गोल पोस्ट के लगे, गोलकीपर ने सेव किया तो हमें कॉर्नर मिला, कॉर्नर मिला फिर भी हम गोल नहीं कर पाए, तो ये एक फायदा होता है कि जब अगर अपने फॉरवर्ड नहीं चल रहे हैं तो हमें स्टॉपर को मौका दिया जाता है आगे शूटिंग के लिए, ताकि वो लंबी डिस्टेंस से 20 मीटर 30 मीटर डी के बाहर से गोल पोस्ट में शूट ले सके।
1: मैच के दौरान तो एक दूसरे को बहुत ही शत्रु की तरह से देखा जाता है कि
0: जी
1: ये मेरी टीम पर गोल कर सकता है, मुझे इससे अपनी टीम का बचाव करना है, गोल पोस्ट को रोकना है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर होते हैं, प्रतिद्वंदी टीम की बात करते हैं, तो व्यवहार किस तरह का होता है?
0: जैसे मैच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, किसी के चोट नहीं लगती है, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में झगड़ा वगैरह नहीं होता है, तो जब मैच खत्म होता है तो मैच के अंदर क्या हुआ वो सब चीज भूल के दोनों टीमों के कोच और दोनों टीमों के खिलाड़ी एज ए परिवार की तरह मिलते हैं। अगर मैच के अंदर कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया या कुछ ज्यादा माहौल गर्म हो गया, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि

0: खिलाड़ी ना तो हैंडशेक करता है ना गले मिलता है, वो नाराज होकर चला जाता है। तो ये कम ही होता है, पर ज्यादातर मैच खत्म होने के बाद सब खिलाड़ी आपस में मिल लेते हैं और वो पल ऐसा होता है कि मैच को भूल के अच्छा रिश्ता डेवलप करते हैं।
1: अपनी कमजोरियों को खिलाड़ी और टीम किस तरह से पता लगाती है?
0: जैसे आज मुझे स्टॉपर पे खिलाया और मेरा काम है बॉल रोकना हेड से या पैर से या रनिंग करके, लेकिन आज मुझसे दो हेड मिस हो गए, एक हेड पे गोल हो गया, तो कोच मुझे पकड़ लेगा मेरे से हेड क्यों मिस हुआ, कोच उसी पे काम करता है और फिर मैं भी उसी पे ही काम करूंगा, क्या प्रॉब्लम रही जो मेरे हेड मिस हो गए।
1: कई बार एक खिलाड़ी की गलती से पूरी टीम हार जाती है, गोल हो जाते हैं, बाद में किस तरह की बातें आपस में की जाती है?
0: सर ऐसा भी एक किस्सा हुआ था 2009 में फर्स्ट संतोष ट्रॉफी में हमारा मैच त्रिपुरा के खिलाफ था और हम दोनों टीमें बराबरी पे चल रहे थे, हमें एक पेनाल्टी मिली थी। एक्चुअल में क्या वो पेनाल्टी मिली तो हमारा एक दोस्त था जो खिलाड़ी था, बिना कोच के पूछे उसने पेनाल्टी ली और मारी और आउट चली गई, तो हम वो मैच ड्रा पे रह गए जबकि हम वो जीत जाते हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम मिला था। पर उस समय क्या होता है कि कोच बहुत हाइपर हो जाता है और वो गुस्सा पी लेता है क्योंकि पब्लिक वगैरह सब देख रही होती है, कुछ नहीं बोल पाता, पर जब हमारा चेंजिंग रूम आता है तब वो कहीं ना कहीं अपना जो टेम्परामेंट है वो नॉर्मली खो देता है या नहीं भी खोता है, मतलब वो मतलब उस प्लेयर को कड़ी फटकार लगाता है कि आपको रुकना चाहिए था, पूरी टीम से पूछना चाहिए था, तो ये हो जाता है क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है ना सर कि बॉडी पूरी गर्म रहती है तो दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है।
1: एक आदर्श खिलाड़ी कौन रहे हैं आपके, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है?
0: हमारे जो चित्तौड़ के पुराने कोच थे विजय सिंह जी काक्सा, जिन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया था, और एक नईमुद्दीन शेख थे जो रतलाम डीआरएम रेलवे स्टेशन मास्टर थे, तो मैं इन दोनों जैसा बनना चाहता था क्योंकि इनकी हाइट फिजिक्स भी अच्छी थी और उनका गेम भी अच्छा था और इन्होंने कोचिंग भी की मेरे को।
1: इस समय खेल के साथ में जुड़ाव किस तरह से आपका हो रहा है?
0: प्रोफेशनल फुटबॉल तो मैं 32 साल की ऐसे मैंने अलविदा कह दिया, मैं सुबह जाता हूँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता हूँ और खुद को फिट रखने के लिए भी खेलता हूँ और बच्चों को समय समय पर कोशिशें करता हूँ कि जो भी मेरे पास है उनको वो दो और तैयार करूँ और एक ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी बनाऊँ ताकि पहले कोच नहीं हुआ करते थे, अभी हम अच्छे लेवल पे खेले तो उसे बता सकते हैं कि क्या क्या कमी है आप में और कैसे सुधार हो गया।
1: खिलाड़ी को खान पान का भी ध्यान रखना होता है?
0: बिल्कुल सर, फुटबॉलर ऑयली चीजें नहीं खा सकता ज्यादा, मतलब कोच अलाउ ही नहीं करेगा, ज्यादा बाजार का नहीं खाने देगा, फास्ट फूड नहीं खाने देता है, एक टाइम आपको दाल चावल लेना ही पड़ेगा, हल्का खाना, इन सब चीजों का कोच बहुत ध्यान रखता है, जूस वगैरह का, फ्रूट का इनका।
1: आज के दौर के युवाओं को कोई सलाह देनी हो क्या देना चाहेंगे?
0: आज के दौर के युवाओं के लिए सर एक सलाह है कि आप कोई भी गेम खेलें पर एक गेम जरूर खेलें, क्योंकि आज सर देखते हैं अपन बीमारियां वगैरह इतनी बढ़ गई है कि अपन 24 घंटे में से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं, वो पैसा वहां लग रहा है, जिम में जा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन अगर युवा अपने लिए और अपने शरीर के लिए सिर्फ 2 घंटा भी निकालें कोई भी गेम खेलें तो उससे लॉन्ग टाइम वो फिट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा और उसका कुछ कन्वेंस है जो बचेगा।
1: शाहिद भाई, आज के युवा युवतियों को खेल के मैदान में क्यों आना चाहिए?
0: सर कंट्री को जरूरत है सबसे पहले, तो अगर युवा ग्राउंड में नहीं आएगा तो हम ओलंपिक में दूसरी जितनी भी ट्रॉफी उनमें मेडल नहीं ला पाएंगे, अगर युवा ही ग्राउंड में नहीं आएगा सर तो देश का नाम कब आगे बढ़ेगा, स्टेट का कब आगे बढ़ेगा, जब खेलने वाला ही कोई नहीं होगा तो स्टेडियम मैदान खाली रहेंगे।
1: खेल कैसे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है?
0: खेल सर स्वास्थ्य को और दिमाग को दोनों को अच्छा रखता है, रीजन ये अगर आप सुबह भी खेलते हैं शाम को खेलते हैं, सबसे पहले आपका जो भी गेम है, मैं फुटबॉल की नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गेम खेला आप, एथलेटिक्स में हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी खेले आप, तो आप खेलोगे वार्म अप होगे, सबसे पहला तो आपका पसीना निकलेगा, आपके जो भी अंदर की वीकनेस है वो खत्म होगी, फिर खिलाड़ियों से आप मिलोगे बातचीत करोगे तो आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, तो फिजिकल और मेंटली दोनों आपका स्ट्रांग हो रहा है।
1: आज के दौर के युवाओं को, परिवार के लोगों को कोई सलाह देनी हो खिलाड़ी होने के नाते क्या देना चाहेंगे?
0: तो सबसे पहले तो मैं फैमिली मेंबर्स को सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजें, एजुकेशन भी मस्ट है मैं मानता हूँ, 1 घंटा ग्राउंड के लिए भेजें, बाकी आप एजुकेशन के लिए और घर के लिए रखें, अगर आप बच्चे को ग्राउंड की तरफ भेजेंगे और आपकी तरफ से बच्चा फ्रीडम में रहेगा कि नहीं मम्मी पापा ने भेजा है, तो वो कोई ना कोई गेम में इंटरेस्ट ले ही लेगा और वो किसी न किसी गेम में इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो खिलाड़ी बनेगा, तो फिर अपने स्टेट का और कंट्री का नाम रोशन करेगा, उसे ये मन में डर नहीं रहेगा कि मेरे पापा मम्मी कुछ बोलेंगे, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और जब जब बच्चे को थोड़ी सी भी आजादी मिलती है ना तो वो चाहे जिस गेम में हो वो अपनी जी जान झोंक देता है उसमें।
1: शाहिद भाई, आपकी इन्हीं बातों को हम अंडरलाइन करते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम

0: में अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पर्वतारोही निवेदिता कौर से की गई बातचीत।
2: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम खेल से जुड़ी हुई विभिन्न शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं निवेदिता कौर जी, और आप पर्वतारोही हैं, और आज हम इनसे जानेंगे पर्वतारोहण की चुनौतियों के विषय के बारे में। निवेदिता जी, नमस्कार।
3: नमस्ते सर।
2: निवेदिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पर्वतारोहण अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग स्पोर्ट है, तो किस प्रकार से आपका इस फील्ड में आना हुआ?
3: जी सर, 2019 में मुझे पर्वतारोहण के कुछ कोर्सेज के बारे में पता

0: जी सर, 2019 में मुझे पर्वतारोहण के कुछ कोर्सेज के बारे में पता लगा
1: जी।
0: और सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया
1: जी,
0: जो कि मैंने मनाली से किया था
1: जी।
0: और उसके बाद मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत हद तक सूट करती है
1: जी।
0: तो इसलिए फिर मैंने उसमें आगे एडवांस कोर्स किए और फिर उसके बाद में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने कोर्सेज किए और आगे एक्सपीडिशंस भी इस फील्ड में किए
1: जी। हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और इसमें मतलब जोखिम भी बहुत ज्यादा है।
0: हाँ जी,
1: आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतना जोखिम का स्पोर्ट होने के बावजूद आप इस खेल की तरफ आगे बढ़ी हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ी हैं, तो क्या आपके मन में विचार रहे उस समय?
0: सर, सबसे पहला विचार यही था कि ये मुझे चैलेंज कर रहा था, जो मेरा कम्फर्ट जोन था मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलने के लिए मैंने मेहनत करी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिसके कारण मैं इस खेल की तरफ आकर्षित हुई
1: जी। अच्छा, आपने बताया कि इसमें बहुत तरीके के कोर्सेज भी होते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो ये है कि एक पर्वतारोहण में आपको कहीं चट्टानों पर भी चढ़ना होता है, कहीं
0: हाँ
1: आपको खुले इलाके में भी चलना होता है, जंगली जानवरों का भी खतरा होता है और कई बार कुछ खाइयां होती है, तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो इनमें क्या सभी फील्ड के अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं या किस प्रकार के कोर्सेज इसमें किए जाते हैं?
0: सर, जैसे इसमें मेन कोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक कुछ कोर्सेज हैं जो अपने भारत में एक इंस्टीट्यूट है माउंट आबू में
1: जी,
0: वहां पे रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड केवल कोर्सेज होते हैं, जहां पे आप केवल जो पत्थर के पहाड़ हैं आपको उन पे कैसे चढ़ना है, वहां पे जा रहे हैं उस एरिया में तो कैसे कैंपिंग करनी है, उसके बारे में सिखाया जाता है। और बाकी इंस्टीट्यूट्स में बेसिक माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण में जो कि रॉक क्लाइंबिंग है वो माउंटेनियरिंग का एक भाग है।
1: जी,
0: जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, कहीं बर्फ वाले पहाड़ों में जाएंगे, तो वहां पे आपको पत्थर के पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे और बर्फीले इलाकों में भी जाना होगा।
1: जी जी जी।
0: तो इस तरीके से ये दो तरीके के मेन कोर्सेज होते हैं अपने यहाँ पे।
1: तो आपने क्या दोनों ही तरह के कोर्सेज किए हैं?
0: हाँ जी सर, मैंने दोनों ही तरीके के कोर्सेज किए हैं।
1: तो यहाँ अब एक्सपीडिशंस की बात करते हैं, तो आपने रॉक क्लाइंबिंग में या फिर माउंटेनियरिंग में ऐसी कौन सी दुर्गम स्थान है जो आपने एक्सप्लोर किए हैं?
0: सर, जैसे हम एक्सपीडिशंस में जाते हैं तो जो सबसे अभी तक का सबसे जो ऊंची चोटी मेरी रही है वो 6,250 मीटर की मैंने क्लाइंब करी है लेह लद्दाख में
1: जी।
0: तो वो भी एक काफी दुर्गम इलाका है लेह। अगर हम यहाँ के कंपैरिजन में देखें, अगर जयपुर और लेह की बात करें, तो वो पहले ही बहुत ज्यादा दुर्गम हो जाता है और फिर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उस इलाके में दुर्गम होने लग जाता है वो
1: जी जी,
0: उनकी एक्सेस मेन इलाकों से कटती जाती है
1: जी। दूसरा ये भी देखा गया है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी आने लगती है।
0: हाँ जी,
1: बॉडी में भी। तो क्या इसके लिए कोई विशेष प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ता है या अपनी बॉडी को उस माहौल में ढालने के लिए किस तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं आप लोग?
0: सर, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जो भी प्राणायाम है अगर वो हम करते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और उससे हमारे को ऐसे इलाकों में एडजस्ट होने में हेल्प मिलती है। और दूसरा एक मेन होता है कि जब भी हम हाइट गेन कर रहे हैं तो उस हाइट गेन को हम एकदम से ना करें। अगर मान लीजिए आप अभी 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो एकदम से अगर आप 4000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे, आपने 2000 मीटर गेन कर लिए, तो एकदम से आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो हमें धीरे धीरे जो ऊंचाई होती है तो उसको गेन करना होता है। जैसे जनरली माना जाता है कि 1000 फीट हम एक दिन में गेन करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट होती जाएगी और एकदम से ऐसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे और आप बीमार नहीं होंगे।
1: जी, अच्छा, यहाँ पर आपने बताया कि इसमें रेस्क्यू का भी आपने ट्रेनिंग लिया है, तो रेस्क्यू करना और एक क्लाइंबिंग करना दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो उस समय आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी एक और व्यक्ति की भी होती है।
0: हाँ जी।
1: तो यहाँ किन चीजों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें?
0: सर, रेस्क्यू में यह बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक और व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, तो सबसे मेन होता है कि सही टाइम पे डिसीजन लेना।
1: जी,
0: अगर हम जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कम्युनिकेट कर पाए आपस में। अगर जैसे मान लीजिए मैं रेस्क्यू में जा रही हूँ तो मेरी जो बैकअप टीम है, हो सकता है वो बेस कैंप में होगी, तो आपस में एक जो कम्युनिकेशन रहेगा वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास सही वेदर रिपोर्ट होनी चाहिए। जो रेस्क्यू के लिए जो दूसरी टीम आ रही है, या कई बार हम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यू के टाइम पे रहते हैं।
1: नॉर्मल क्लाइंबिंग के दौरान आपको सिर्फ क्लाइंब करना होता है?
0: सर, तब भी रिस्क तो उतना ही रहता है और चैलेंज उतने ही रहते हैं, क्योंकि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो कई बार आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, एक्सपीडिशन आप लीड कर रहे हैं तो

0: बाकी सभी लोग आप पर निर्भर हैं, आपका कोई भी एक डिसीजन उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है।
1: जी, तो यहाँ स्थिर दिमाग से भी काम करने की,
0: स्थिर दिमाग से आपको जल्दी डिसीजन लेना है और आगे उसको भविष्य को देखते हुए कि आगे इसका क्या असर होगा, उसको
1: तो मतलब ये है कि क्लाइंबिंग में सिर्फ चढ़ना ही नहीं होता, दिमाग को भी चलाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सर, जो अगर माउंटेनियरिंग है और इसके साथ में और भी जितने भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं, वो एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी तो थकने लग जाती है, तो जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है आप उसी के बल पे चलते हैं, और अगर वो नहीं होता तो कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है।
1: जी जी जी, बहुत सही बात आपने कही। अच्छा, एक चीज और भी जब हम देखते हैं तो सिमिलर सी एक चीज होती है, ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं। ट्रैकिंग एक सिंपल पार्ट हो गया माउंटेनियरिंग का।
0: हाँ जी।
1: तो ट्रैकिंग में और माउंटेनियरिंग में, दोनों में अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो वो क्या कह सकते हैं?
0: सर, सबसे मेन बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप ट्रैकिंग या हाइक के लिए जा रहे हो तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप माउंटेनियरिंग के पर्पज से जा रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी।
1: जी,
0: अब ट्रैकिंग जैसे अगर अपन जयपुर की ही बात करें तो आसपास जितने भी अरावली में अपने एरियाज हैं, आप वहां पर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। बस उस एरिया के बारे में आपको एक बार देखना है कि वहां किस तरीके के जंगली जानवर आते हैं, नहीं आते हैं, उनसे कैसे सुरक्षा करनी है, बस उतना ही। लेकिन अगर हम किसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां का एल्टीट्यूड देखना होगा, वहां पे कुछ टेक्निकल क्लाइंब है तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, उस हिसाब से क्लोदिंग चाहिए होगी, उस हिसाब से ही मेडिकल किट, वो सब चीजें होंगी।
1: जी जी,
0: तो माउंटेनियरिंग एक मोर टेक्निकल की तरफ चला जाता है और ट्रैकिंग या हाइकिंग एक मोर फन वाला साइड हो जाता है, जहां पर आप केवल दोस्तों के साथ में आनंद लेने के लिए जा रहे हैं।
1: जी, आपने अभी बताया कि इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो ये इन इक्विपमेंट्स में महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं माउंटेनियरिंग के लिए वो क्या हैं और किस प्रकार से उनको उपयोग में लेने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए?
0: सर, जैसे मेन अगर इक्विपमेंट की बात करें तो रोप होती है हमारे पास, क्लाइंबिंग रोप, उसको लाइफ लाइन ऑफ माउंटेनियर बोलते हैं। कि आप कभी भी जा रहे हैं तो हम रोप अप होके जाते हैं ग्लेशियर में, जबकि जब ग्लेशियर वॉक होता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो क्रेवास में गिर जाए तो उसको बाकी लोग अरेस्ट कर पाए, उसका रेस्क्यू कर पाए। इस तरीके से हमारे पास आइसेक्स होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी रास्ता चेक करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, आप किसी वॉल को क्लाइंब कर रहे हैं उसके लिए। फिर हमारे आइस क्लाइंबिंग बूट्स आ जाते हैं, वो हमारे को बहुत ठंड में और उससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से कैराबिनर होते हैं हमारे पास, जुमार होता है, जुमार एक असेंडिंग डिवाइस है, उससे अगर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हेल्प करता है। क्रैम्पॉन्स होते हैं हमारे को, वो बर्फ में चलने में हमें आसानी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी तरीके से सर बहुत सारे इक्विपमेंट हो जाते हैं।
1: वो डिपेंड करता है कि आप
0: हम किस तरीके की क्लाइंबिंग
1: जा रहे हैं। लाइक आप रॉक्स पर चढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हुक्स की भी,
0: हाँ जी सर, रॉक पे चढ़ रहे हैं तो हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग शूज होंगे, वो शूज अलग तरीके के होते हैं।
1: इक्विपमेंट का डिसीजन तब लिया जाता है जब आप किस तरह की क्लाइंबिंग पर जा रहे हैं।
0: जी सर, जैसे हम कोई भी एक्सपीडिशन प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम जगह देखते हैं कि हमें कौन से एरिया में जाना है, फिर उस एरिया में वेदर कंडीशन कब किस मौसम में कैसी रहती है, अभी इस साल क्या वेदर प्रेडिक्शन रहेगा वहां पे, फिर उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को हम स्टडी करते हैं कि वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वहां पे स्नो और आइस का क्या टाइप है, रॉक का क्या टाइप है, इस तरीके के, और फिर हमारे पास टीम मेंबर्स कैसे जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं या सारे बिगनर्स हैं। इन सब चीजों का डिसाइड करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हमें अब क्या क्या जरूरत रहेगी, हमें कैसे इक्विपमेंट्स ले जाने चाहिए, हमारी क्लोदिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज उसके बाद डिसाइड करते हैं।
1: जी निवेदिता जी, जानना आपसे चाहेंगे, अभी तक आपने 6000 फीट तक की ऊंचाई की आपने ले लद्दाख में एक्सपीडिशंस पे आप गई हैं, आपने एक्सप्लोर किया है ऐसी जगह को। हर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका एक सपना होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए माउंटेनियर आप कौन सी एक्सपीडिशंस पे जाना चाहेंगी अपने आने वाले समय में?
0: सर, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीडिशंस हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी। जैसे आपने बात करी कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का वो सपना होता है कुछ ना कुछ, तो वैसे ही हर माउंटेनियर एक ना एक बार ही सोचता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है या उसे क्लाइंब करना है। ऐसे ही अपने 8000 मीटर की लगभग 14 चोटियां हैं तो इस, और भारत में तो बहुत सारे हैं अगर हम देखें तो, एक हिमालय का बहुत बड़ा भाग हमारे पास है और इसमें बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे लोगों ने कभी क्लाइंब भी नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सारी चोटियां हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी।
1: तो उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग्स हैं उन एक्सपीडिशंस पर जाने के लिए, आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही हैं और

0: कर रही हैं।
1: जी सर, जैसे अभी अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 मीटर के करीब है, तो जैसे अभी मैंने 6000 मीटर तक की पीक क्लाइम कर ली है, तो अभी मेरा प्लान है कि इस साल मैं कोई 7000 मीटर की पीक करूं, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बॉडी उस एल्टीट्यूड तक कैसे काम कर रही है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्लाइम करते हैं तो सक्सेस के चांस भी बढ़ जाते हैं और सीखने को भी ज्यादा मिलता है। अगर बजाय अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट कोर्स करके मैं डायरेक्ट 8000 मीटर की चोटी पर जा रही हूँ, तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी वहाँ एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, और वो अलग तरीके के चैलेंजेस होंगे।
0: जी निवेदिता जी, आपने बहुत सही बात कही। और ये बताइए कि आप एक माउंटेनियर हैं, तो हर एक स्पोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक डाइट्स की जरूरत होती है।
1: हाँ जी।
0: तो एक माउंटेनियर के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है, या जहां वो एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं उस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है?
1: सर, जब एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अपन जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। तो वहां पे आप जितना सिंपल फूड लेंगे जिससे जो हमारे को जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहता है।
0: जी।
1: तो हम लोग ऐसे, और मोस्टली ये होता है कि जब आप इतने एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम वहां पे रोटी सब्जी बना सकें, तो वहां पे मोस्टली प्रिफर किया जाता है दाल चावल खाना, क्योंकि उसमें पूरा प्रोटीन भी आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है और वो आपको पूरा पोषण भी देता है। इसलिए
0: आपने बताया कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ये एक्सपीडिशन लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन का भी हो सकता
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस दौरान जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर पहुंचते जाते हैं, तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की और बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैं।
1: हाँ जी।
0: तो क्या उन एल्टीट्यूड से वापस लौटने के बाद में उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर आप एक 10 से 15 दिन के एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं तो जनरली ये होता है कि आपका 3 से 4 kg वेट लूज हो जाता है।
0: जी जी।
1: तो जब आप नीचे आते हैं तो जरूर आपको रेस्ट की भी जरूरत होती है और एक्स्ट्रा डाइट की भी जरूरत रहती है, ताकि जो भी लॉस हुआ है उसको वापस गेन कर सको, तो एक रिकवरी का पीरियड रहता है।
0: जी निवेदिता जी, आपसे बहुत बातें हमने की, जाना आपसे माउंटेनियरिंग के बारे में। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, अगर वो माउंटेनियरिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिसका भी इंटरेस्ट है कि उन्हें माउंटेनियरिंग में जाना है, तो कम से कम वो एक बेसिक कोर्स जरूर करें, जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी पहाड़ों पे जो चैलेंजिंग होंगी, तो आपको उनको कैसे डील करना है। और आप वहां पर जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है इस फील्ड में आने के लिए। कई बार ये होता है कि हम बिना कोर्स किए ही एक्सपीडिशंस पे चले जाते हैं, तो वो उनके लिए काफी खतरनाक हो जाता है।
0: जी जी।
1: तो एक बार कोर्स जरूर करें, मैं बस यही सलाह देना चाहूंगी सबको।
0: निवेदिता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और माउंटेनियरिंग के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, निश्चय ही सुनने वाले लोगों को इससे फायदा होगा और जो इसमें जाना चाहते हैं उन्हें लाभ होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे पर्वतारोही निवेदिता कौर से जितेंद्र वर्मा की बातचीत। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम आरंभ करते हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म के इस गीत के साथ। गीत के बोल है विशाल ददलानी के और आवाजें है शफकत अमानत अली और सुनिधि चौहान की।

कबीर सिंह फिल्म से अगला गीत। ये जवानी है दीवानी फिल्म से ये गीत तौची रहना और रेखा भारद्वाज की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है और संगीत है प्रीतम का।

सिंघम फिल्म से कार्यक्रम का आखिरी गीत कुणाल गांजावाला और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे के बोल है और धुन से सजाया है अतुल अजय ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: रात्रि के और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की।

0: बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।